0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

हाँ।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: ओम नमः शिवाय शांताय।

0: फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगायते नमः। श्रावण प्रभात के इस प्रातःकालीन पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रावण मास हम समस्त हिंदुओं के लिए बड़ा ही दिव्य मास है। भगवान शिव की सब लोग आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव की आराधना, सनत कुमार स्वयं कहते हैं कि वो मंत्र हैं जिन मंत्रों से, और आप नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव आपके सब मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। मंत्र हैं, ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे वैयाघ्रवसनच्छादाय अरेणयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकरणानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महाद्रष्टिने कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पारियात्र सुब्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोंतगाय पशुपतये व्यंगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शंशिखिंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापण वतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय श्मशानवासिने भगवते उमापतये अरिदमाय भगस्याक्षितपानिपतिने पूष्णौ दशनाशनाय क्रूरकर्तव्याय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विशंपायने उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग्दक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रस्तकंभाय वसूनां स्तंभकाय कृतवे क्रतुकाराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसने तिसामश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्य युत समप्रभाय देवाय सर्वतूर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंदनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवणे द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ओम नमो नमः।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। श्री शिव महापुराण सुक्ति सुधा परोपकारा सदृष्टम नश्यन्ते धर्मत्परा खलु। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। पुण्य क्षेत्रेम कृत्वाम पुण्यम वसुधा ऋषि मृज्यते। पुण्य क्षेत्रे कृत्वाम पाप महादंडवधि जायते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। धर्मातिर्जार्थम भोगेन वैराग्यम पुनः जायते। विप्रार्थितार्थ भोगेन राग एवं प्रजायते। धर्म पूर्वक उपजाई धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपजाई धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्मो धरा हिंसा काम दरूपेन धर्मस्तु सुखरूपाम। धर्ममार्धार्थ दुख धामो ते धर्मादि सुखमभेत। विद्यातम दुरोतित्यम दुखम सुखम विद्या समृतम। धर्माचनार्थ मतः कुर्यात देव मोक्ष प्रादयते। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं संयुद्धक का भागी होता है। दुराचारी से दुख प्राप्त होता है और सदाचारी से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। आत्मत्वेदं त्रितात्योक्तं मुद्यातुखं तु बुधाभुगं नित्यानिमित्तेक्तं कार्यकर्म कुर्यात् धर्मः। अपने धन के तीन भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तथा तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य के ये तीन प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से रखें। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरं भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राम दूताय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज थर्सडे 30 जुलाई 2026 के इस पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, आज से अत्यंत पावन श्रावण मास का शुभारंभ हो रहे हैं। सनातन परंपरा में यह संपूर्ण मास भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। पूरे मास में भक्तगण रुद्राभिषेक, शिव जी के नाम पूजन, शिव जी के चरित्र कथा आदि स्मरण करते हुए

0: उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरित मानस मास भी इसी श्रावण मास के अंतर्गत निभाया जाता है। इसका एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक कारण यह है कि राम कथा के प्रथम वक्ता एवं श्रोता भगवान शिव और माँ पार्वती जी को ही माने गए हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना करते समय सबसे पहले भगवान शिव के दिव्य चरित का वर्णन किया और उसके पश्चात राम कथा का विस्तार हुआ। इसके माध्यम से गोस्वामी जी यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शिव चरित्र का रस नहीं लेता, शिव तत्व को नहीं समझता, उसके लिए श्री राम कथा के वास्तविक भावों को समझना कठिन है। भगवान शिव और श्री राम अभिन्न है। शिव जी स्वयं राम के परम भक्त माने जाते हैं और भगवान राम शिव जी को अपने आराध्य मानते हैं। यह एक दूसरे की पूर्ण करने वाला, जैसे कहे एक दूसरे के पूर्णोतक माने जाते हैं। इसलिए यह कहना उचित है कि श्री राम की कृपा के बिना महादेव की वास्तविक पूजा संभव नहीं है और महादेव की कृपा के बिना श्री राम की भक्ति प्राप्त होना असंभव है। दोनों एक दूसरे तक पहुंचने के दिव्य सेतु है। अतः जो शिव जी के शरण में जाता है वह राम तक पहुंचता है और जिसे राम की कृपा प्राप्त होती है वह शिव तत्व का भी यथार्थ अनुभव कर लेता है। शिव जी और भगवान राम एक दूसरे के पूर्णतक है। इसी पावन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हिंदू महासभा द्वारा आज से लेकर के फ्राइडे 28 अगस्त तक प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 48 में शिव सती चरित्र जो वर्णन हुआ है उसका हम प्रतिदिन आपके सामने चौपायों के माध्यम से इसका पाठ करके इसका भवार्थ भी आपके सामने रखेंगे। मैं आप सबों से निवेदन करूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारे साथ रामचरितमानस का पाठ करें, इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बने। तो आइए कल से हम सब मिलकर के रामचरितमानस के शिव सती चरित्र का मंगलमय पाठ प्रारंभ करें और भगवान शिव एवं प्रभु श्री राम की कृपा के पात्र बने। आज के कार्यक्रम को मैं ही विराम देता हूँ। कल प्रातः पुनः इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस की ओर से स्वीकार कीजिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री, मैं नमस्ते करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र चारों वेदों में उपलब्ध होता है। इस मंत्र का अर्थ है गुरु मंत्र इसको कहते हैं, सावित्री मंत्र इसको कहते हैं, गायत्री मंत्र भी इसको कहते हैं। गायत्री का अर्थ है गान, जिसके करने से, त्र का मतलब है हमारे जीवन की रक्षा होती है। चारों वेदों का मानो ये निचोड़ है। भूर्भुवस्वः, भू कहते हैं प्राण शक्ति को देने वाले। हे परमात्मा, तुम कैसे हो? हमारे जीवन के अंदर जो रेस्पिरेशन, श्वास प्रश्वास चल रहा है, उसको देने वाले हो। भुव का अर्थ है हमारे सारे सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हो। स्वः, तुम स्वयं सुख स्वरूप हो और अपने उपासना करने वालों को भी सब प्रकार का सुख, शांति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। तत् का मतलब होता है जो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े यूनिवर्स को जो बनाने वाला है। सवितु का मतलब है क्रिएटर, पैदा करने वाला। जैसे एक बीज को हम डालते हैं पृथ्वी में तो वो ऊँचा बनता है, वृक्ष बनता है और पता नहीं कितनी कितनी वनस्पतियाँ बनती है, तो वो उसके अंदर प्रेरणा उस सविता की है। वरेण्यम, ऐसा जो परमात्मा है जो वरणीय है, स्वीकार करने योग्य है। कैसा है? भर्गः, सब प्रकार के हमारे त्रिविध तापों,

0: आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों को दूर करने वाले हैं, देवस्य और सबसे बड़ा दाता है। देखिए संसार के अंदर हमें जितने भी पदार्थ मिले हैं उसका रचयिता, उसका क्रिएटर बनाने वाला तो भगवान ही है। इसलिए देवताओं में जितने देवता हैं उनमें सब में महादेव उसको कहा गया है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो देवस्य का मतलब है दाता, दयालु। इतना बड़ा महान देव है वो, सारे देव उसकी प्रशंसा में लगे रहते हैं। अग्नि है, वायु है, आदित्य है, जितने भी देवता हैं, ऐसे उस देवस्य, भर्गह देवस्य धीमहि, ये क्रियापद है। धीमहि का मतलब है हम उस परमात्मा का ध्यान करें, उसकी उपासना करें, उसकी भक्ति करें, उसकी स्तुति करें। किस लिए करें? तो मंत्र में कहा धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी धी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी रहे, हम कोई भी कार्य बिना कोई गलत कार्य न कर पाएं, इसके लिए ही इस मंत्र के अंदर श्रोताओं स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। स्तुति का मतलब होता है जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, उसको वैसा ही जानना, ये स्तुति कहलाती है। प्रार्थना का मतलब है हम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए मनुष्य से अथवा भगवान से सहायता मांगने को प्रार्थना कहते हैं। उपासना किसको कहते हैं? नज़दीक बैठने को, उप प्लस आसन, परमात्मा के निकट बैठ करके क्या मांगे परमात्मा से? धन ऐश्वर्य तो सब कुछ मिला ही हुआ है, केवल एक ही बात हमेशा मांगा करें और वो क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी धी बुद्धि अच्छे कामों में सदा लगी रहे, ये उपासना है। और इसीलिए कहा गया है प्राण प्रदाता संकट तराता विश्व विधाता ओम ओम, तेरा ही हम ध्यान करें, तुझको ही हम जपें अपने जीवन में, ये वेदों का सार है, गायत्री का सार है।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत श्रावण मास के शुभ अवसर वेद संदेश श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को आचार्य बितुला एवं श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। श्रावण मास में विशेषकर वेदों का प्रचार होता है। सबसे पहले मुख्य बात जान लेते हैं, वह यह है श्रावण, श्रवण और श्रावणी उपाकर्म। श्रावण का अर्थ होता है मास का नाम, श्रवण का अर्थ होता है नक्षत्र का नाम और श्रावणी का अर्थ होता है दिवस

नाम। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र को श्रावणी उपाकर्म पर्व का शुभ आरंभ होता है। इस पर्व का संबंध खेत, अन्न और किसानों से है। ऋतु के अनुसार किसानों के कार्यों में विश्राम का समय माना जाता है, अर्थात किसान कृषि कार्य नहीं करता, अपितु ऋषि सत्संगों में वेद संदेश श्रवण करता है। उस वेद संदेश श्रवण परंपरा को आज हम जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका श्रेय हमारे MBC को जाता है कि आप वेद संदेश श्रावण मास में श्रवण कर पा रहे हैं। सबसे पहले वेद क्या है? वेद परमात्मा का ज्ञान है। वेद चार हैं। वेदों में केवल मंत्र हैं, 20,416 मंत्र हैं। परमात्मा ने चार ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और चारों ऋषियों से जिसने वेदों को पढ़ा उनका नाम ब्रह्मा हुआ। इस कलयुग में महर्षि दयानंद जी ने वेदों को पढ़कर कहा कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि तक वेदों का उपदेश कर रहा हूँ, अर्थात ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि तक वेदों का प्रचार रहा। फिर वेदों का प्रचार महर्षि दयानंद जी ने किया। आज हमारा सौभाग्य है कि श्रावण मास में वेद संदेश श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वेद कह रहा है परमात्मा को जानो और विद्वानों को अपनाओ, अर्थात परमात्मा कौन? जो सृष्टि करता है, बनाता है, चलाता है और संहार करता है, वेदों का ज्ञान देता है और कर्मों के जो जीव के कर्मों का फल देता है। ये पांच काम परमात्मा करता है, वो परमात्मा। और विद्वान कौन? विद्वान जो हमें आगे ले चलता है। आज का वेद संदेश आपकी सेवा में ऐसा रहा। आगे हम फिर चर्चा का विषय ले चलेंगे। ओम शांति शांति शांति।

0: यत्सस्वर्तावाजीरिडे यरा विश्वतदेन इमहे तुराणाम्।
1: सत्कार और तिरस्कार देश काल और परिस्थिति के अनुसार निर्भर हैं। जो मनुष्य अपने अभद्र और क्रोधित कराने वाले शब्दों से हम लोगों को नीचा दिखावे, ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों से दूर रहें अथवा ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें, क्योंकि उनके व्यवहार में कुनीति, अहंकार, लोभ, क्रोध, काम, पाप व अपराध झलकते हैं। परंतु श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले जनों को अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार में

परोपकार व पुण्य की भावना झलकते हैं। जो पापी जन धार्मिक जनों के अनादर करने वाले होवें उनसे दूर रहना चाहिए, और जो नम्रता आदि से युक्त धार्मिक होवें उनको समीप बसावें, जिससे सबका कल्याण होवें तथा श्रेष्ठ यश प्रकट होवें।

0: सभी पासों व बंधनों से हम छुटकारा प्राप्त करें, सभी ऐशनाओं से दूर होवें, क्योंकि ऐशना रूपी बंधन से आत्मा पतित होकर दुख पाती है। मनुष्य विवेकहीनता से भोग विलास में निमग्न रहकर खोखला हो जाता है और सच्चा सुख भोगने की क्षमता खो बैठता है। जो जितना अधिक आत्मबल का धनी होगा वह उतना ही जल्दी इन मोह माया के बंधनों को काट फेंकने में समर्थ होगा।
1: ओम यत्र ब्रह्मचक्षत्रञ्च समौञ्चौ चरतः सः तं लोकं पुण्यं यज्येषो यत्र देवाः सहाग्निना।
0: जहाँ उत्तम ज्ञान तथा सत्य विद्या द्वारा सत्कर्मों को जागृत रखना आवश्यक है, वहाँ असत्य और अज्ञान रूपी शत्रु का संहार करना भी आवश्यक है। लोक में उचित अनुचित एवं पुण्य कर्मों को जानना चाहिए। सत्य ज्ञान, पुण्य कर्म और ईश्वर उपासना के संयोग से ही आध्यात्मिक जीवन बनता है। ज्ञान के वाहक श्रेष्ठ विद्वान ऋषि मुनि और समाज तथा राष्ट्र के रक्षक क्षत्रिय वर्ग का तेज जहाँ साथ साथ रहेगा, वह समाज सदैव फलता फूलता रहेगा।

0: मैथिली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के बुलेटिन में। 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में मूवमेंट पैट्रियट मौरिशिया के नेता अलान गानूनी से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कल पूछताछ की। उन्होंने कहा कि जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी उनका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं था। सरकार SMEs को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10 साल पुराने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। वहीं अगस्त से 25 माध्यमिक स्कूलों में ग्रेड 10 के छात्रों के लिए रिबाउंड प्रोग्राम शुरू होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक बनाना है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की नई रिपोर्ट के अनुसार लड़कियां पढ़ाई में आगे हैं, लेकिन लीडरशिप वाले पदों पर उनकी

भागीदारी अभी भी पुरुषों से कम है। आज से श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है। सनातन धर्म में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जबकि आर्य समाज में वैदिक यज्ञ, स्वाध्याय और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का संकट जारी है। ग्रीस में आग बुझाने

0: अब चलिए जानती हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात होगी, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद पश्चिम में वर्षा होने की संभावना है और बादल भी छाए रहेंगे, और इसके बाद रात को पूर्व उत्तर और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराने की संभावना है, वर्षा काफ़ी तेज़ भी हो सकती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर, सूर्यास्त 5:51 पर होगा।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station,

सदकल्लाहु अज़ीम। अभी आपने कुरान पाक की चंद आयत मुबारका की तिलावत समाअत की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो हमें इनायतों के सुनने का अजर सवाब अता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन। पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत करते हैं।

मोहतरम सामीन, तहारत निस्फ ईमान है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत यानी पाकिजगी ईमान का निस्फ है, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देती है, और सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमान और ज़मीन के दरमियान की जगह को भर देते हैं। इस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को ईमान का निस्फ करार देकर उसकी गैर मामूली अहमियत वाजिह फरमाई है। इस्लाम सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं बल्कि जिस्म, लिबास, जगह और दिल की पाकिजगी भी ईमान का लाजमी हिस्सा है। एक मुसलमान वजू, गुसल, पाक लिबास और साफ सुथरी ज़िंदगी के ज़रिए अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करता है। तहारत इंसान को इबादत के लिए तैयार करती है, दिल में खुशु पैदा करती है और मुसलमान की शख्सियत को पाकिज़ा और बावकार बनाती है।

वुजू से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वुजू करता है उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह झड़ जाते हैं। यह हदीस हमें बताती है कि वुजू सिर्फ जिस्म को पाक करने का अमल नहीं बल्कि रूहानी पाकिजगी का भी ज़रिया है। जब मोमिन सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल वुजू करता है तो अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। चेहरा, हाथ, सर और पांव धोने के साथ इंसान के गुनाह भी झड़ते जाते हैं। इसलिए वुजू को जल्दी जल्दी या मामूली अमल समझने के बजाय पूरी तवज्जो, अदब और सुन्नत के मुताबिक अदा करना चाहिए ताकि उसकी कामिल बरकत हासिल हो।

मस्जिद को साफ रखें, बच्चों को भी सफाई और तहारत की आदत डालें और हर इबादत से पहले अपनी पाकिजगी का एहतमाम करें। ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ अपने दिल को हसद, बोझ, तकब्बुर और नफ़रत से भी पाक करें, क्योंकि हकीकी कामयाबी उसी की है जो ज़ाहिर और बातिन दोनों में पाकिज़ा हो। अल्लाह ताला हमें तहारत की अहमियत समझने, उस पर अमल करने और अपनी इबादात को खालिसतन अपनी रज़ा के लिए अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन मोहतरम, सवाल खैर प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कार्य प्रारंभ होने वाला है, श्रावणी कार्यक्रम, श्रावणी मास का कार्यक्रम। श्रोताओं, यह ऐसा महीना है जो पूरी तरह से हमें भगवान से जोड़ देता है। श्रावण मास में वर्षा बहुत होती है, तो सन्यासी लोग जंगल इत्यादि से निकलकर गृहस्थी या गांवों की ओर बढ़ते हैं और जो कुछ वर्ष भर में उन्होंने अपने अध्यात्म की कमाई प्राप्त की होती है, उसे वे गृहस्थियों में, गांवों में, नगरों में, बैठकाओं में जा जाकर प्रवाहित करते हैं और उनके विचार हम सबको मिलते हैं। उससे हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है और हम वर्ष भर अच्छे काम करते हैं। तो श्रावणी मास में विशेष रूप से अपने वेद आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करना, और जो संन्यास ले चुके हैं या जो लोग अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उन ज्ञानी जनों को विशेष रूप से बुलाकर सुनना, यही है श्रावणी मास का सबसे बड़ा कार्य। आइए वेद का ये

0: श्रोताओं, हमारे ऋषियों ने, या हम तो कहें मालूम भी नहीं कि वेद के मंत्रों की रचना किस ऋषि किस मुनि ने कब की, लेकिन वे सब प्रकृति से जुड़े हुए थे। आज तो हम कहते हैं वेद की रचना स्वयं भगवान ने की, अर्थात वेद तंत्र या मंत्र दृष्टा, जिन्होंने जीवन की साधना यहाँ तक पहुँचा ली थी कि बोले तो बस मंत्र निकले। आज वही वेद हम सबके मार्गदर्शक हैं। वही वेद, उन्हीं की व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी की। सत्यार्थ प्रकाश हमारे पास एक सरल ग्रंथ है, जिसमें हम वेदों की, अपने शास्त्रों की व्याख्या को पढ़कर समझ सकते हैं। तो श्रावणी मास में जो कुछ हमारे शास्त्र ग्रंथ वेद उपनिषद कहते हैं, उन सब का मनन करना, चिंतन करना, उसमें से सत्व को निचोड़कर अपने जीवन में उतारना और उस शक्ति को प्राप्त करना, यही है श्रावणी। आइए सुनते हैं।
1: दि शिष्योपदेश भाग इन द शिक्षावल्ली ऑफ तैत्तिरीय उपनिषद। स्पीक द ट्रूथ, प्रैक्टिस राइटियसनेस, मेक नो मिस्टेक अबाउट स्टडी, हैविंग ऑफर्ड द डिजायरेबल वेल्थ टू द टीचर, डू नॉट कट ऑफ द लाइन ऑफ प्रोजेनी। There should be no inadvertence about truth. There should be no

श्रोताओं, जिसने श्रद्धा और विश्वास से अपने शास्त्रों के प्रति पूरा सम्मान दिखाया, उन्हें अपनाने की चेष्टा की, उसका मन सदैव मुदित रहता है और सचमुच प्रसन्न मन से

और श्रावणी मास में तो विशेष रूप से अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, वार्तालाप, पढ़ना पढ़ाना, ये कार्य जो करता है प्रेम मुदित मन से, बस प्रभु उसके घर जरूर आते हैं।

श्रोताओं, यह शरीर क्या है? माटी का शरीर है, कब चला जाएगा पता ही नहीं है। लेकिन इस माटी के शरीर को भी मंदिर की तरह बनाना है, तो इसे मंदिर बनाने के लिए उसमें एक अच्छा पुजारी भी तो चाहिए ना। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस माटी के शरीर से अच्छे कार्य करवा सके। इसीलिए श्रावणी मास में हम जितने भी संत जन हैं, ज्ञानी जन हैं, उनको खूब सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, ताकि यह जो माटी का शरीर है इसमें अहंकार ना आए, इसके माध्यम से हम सबका भला कर सकें। तो श्रावणी मास में दान, पुण्य, सेवा, इसका बड़ा ही महत्व है।

परंतु श्रोताओं, इस माह में हम इतने अच्छे कर्म करें कि ये सारे कर्म हमें वर्ष भर गौरव प्रदान करें, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाएं, हमारी आत्मा को और मजबूत करें, ताकि हम अपनी इच्छाओं के जाल में फंसे नहीं, मोह माया ईर्ष्या द्वेष अहंकार इस सब से निकलने की साधना का वक्त है ये श्रावणी। तो बार बार चिंतन करना, बार बार अपनी कमजोरियों को समझना और रास्तों को ढूंढना, यह है श्रावणी मास, जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो श्रोताओं, चलिए इस अंतिम गीत को सुनते हैं और अलका धनपत और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में मूवमेंट पैट्रियट मॉरिसन के नेता अलन गानू से मंगलवार को एफसीसी ने अंडर वार्निंग पूछताछ की है। अलन गानू ने कहा कि जिन दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, इसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं था। मॉरिशस में एसएमईज को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। लगभग 10 साल पुराना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट अब बदला जाएगा ताकि उद्योगों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके। बात करते हैं अब शिक्षा के बारे में। युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाने के लिए सरकार अगले महीने से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। अगस्त से देश के 25 कॉलेजों में ग्रेड 10 के छात्रों के लिए रिबॉन प्रोग्राम की शुरुआत पायलट परियोजना के रूप में की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी उन्हें बनाना है। आज से पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है। आर्य समाज के लिए ये महीना केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि वैदिक जीवन शैली, आत्मानुशासन, यज्ञ, स्वाध्याय और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक है। इस पूरे मास में आर्य समाज के विभिन्न केंद्रों में, शाखाओं में वैदिक यज्ञ, वेद मंत्रों का पाठ, सत्संग और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आज इसी संबंध में जेवी पोटरी में यज्ञ का आयोजन किया गया। सनातन धर्म में इस मास का बेहद महत्व है। भगवान शिव को समर्पित ये महीना श्रद्धा, भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे मास में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक भी करते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विदेश की खबरों में यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का संकट बना हुआ है। ग्रीस पर आग बुझाने के अभियान के दौरान दो दमकल कर्मियों की मौत हो गई, जबकि तेज हवाओं के कारण कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड मोंसेंट सेंट अंद्रे लुलु सुपरमार्केट के पास 82 years old के चित बहाल रामसोहक की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हरिदत्त के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे पहले एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से काम कर चुके हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी माया देवी रामसोहक के मकान रॉयल रोड मोंसेंट सेंट अंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन tomorrow at 10 a.m. Monseigneur VRS Lal Matime 59 years old ki 59 saal ki Purnima Bullock ki mrityu ho gayi hain. Paidaish naam nakshe di, log unhein Maya ke naam se adhik jante the. Unke arthi kal subah ke 9:30 baje unke pati Bhujidev Bullock ke makan मुसलमान वीआरएस लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ

0: सीनियर सिटीजन प्लान मान्यो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मान्यो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मान्यो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
1: महफिल ऐ शमा फिर तीनों कहां।
2: RM3 Radio.

सुहाना सफर सुहाना सफर। अजी मन मदहोश हो रहा है तो होने दीजिए, आप हमारी महफिल में आ जाइए, फिर देखिए यहाँ का जो मैजिक है कैसे आपके मूड को चेंज करता है। 12:11 हुए हैं, नमस्कार। आज है गुरुवार 30 जुलाई, यानी कि बस जुलाई को बाय बाय कहने का समय आ गया है। रेडियो मनोरंजन पर आपका स्वागत करती है। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम है ये टिकटॉक पे भी लाइव होता है, तो अभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं मैं आपको बता दूं, आप मुझे 10-15 मिनट दे दीजिए, फिर उसके बाद हम टिकटॉक पे लाइव आएंगे। आई थिंक मे बी मुझे 20 मिनट लगेंगे, यानी कि 12:30 से हम लोग लाइव होने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, 12:30 हम लोग लाइव होंगे टिकटॉक पर। अभी फिलहाल के लिए खूबसूरत गीतों का ये जो सफर है, इसमें जो अगला गाना होगा लेकर आए हैं आपके लिए खूबसूरत सा गाना, और इसमें आवाज मिला रही हैं महेंद्र कपूर और लता जी।

जी श्रोताओं, हमारा आपका साथ रहेगा रेडियो मनोरंजन पर, और यहाँ पर एक के बाद एक जो खूबसूरत गाने हैं लेकर आए हैं आपके लिए, आपकी खूबसूरत यादों को महकाने के लिए।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर,
1: ये है आपका अपना सुहाना सफर। दिन के 12:30 हुए हैं दोस्तों। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं टिकटॉक पे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टिकटॉक अब थोड़ी देर में लाइव होने वाला है और आपके डेडिकेशन हम वहीं पे सब नोट कर लेंगे। बस आप प्यार से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे गीतों को गुनगुनाते चलिए। मैं हूँ विनीता और साथ रहूंगी आपके 2 बजे तक।

0: खाना सफर खाना सफर
1: ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं और कुछ भुलाने की ज़रूरत नहीं है। बीते दिनों को याद करने का समय है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। सो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागत है आप सबों का हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र। और जैसा कि आप जानते हैं, सुहाना सफ़र में यहाँ पर हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ हमारी एक पूरी फैमिली होती है जो हमें शुरू से फॉलो करती हैं। और यहाँ पर हम नमस्कार कहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे माधुरी, संगीता, सुखारी, दुर्गा, राजेश, जूतन का, और साथ में हमारे साथ अभी जुड़ी हुए हैं अकीम, लीना, कविश, श्यामा महराली, ललिता एंड हैप्पी फ्राइडे। पर आज तो थर्सडे है, आप फ्राइडे तक पहुंच गई। चले जी, यहाँ पर आकाश हमारे साथ है, नमस्कार विमी, आपका स्वागत है, रीता देवी नमा, आप कैसे हो, माया राम जोश जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कैसे हैं आप। चले तो इसी के साथ अभी हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आगे बढ़ने का समय हो गया है और अगला गाना सुनने का भी समय हो गया है। तो अभी आप एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन रहे थे और लता जी की आवाज़ में और साथ दे रहे थे सुरेश वाडकर। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में जो नेक्स्ट गाना आ रहा है वो हमने लिया है आपके लिए महान फिल्म से। आपको ये गाना पसंद आएगा, वैसे आपको पता है ना कि बीच बीच में हम थोड़ी मस्ती करते रहते हैं, तो वही मस्ती के लिए हम आए हैं। चलिए तो दे करते हुए पे गाना कल्याणी हरी के नाम डेडिकेट करेंगे। हाय शाय, कैसे हो, गाना जाएगा आपकी बेटी के लिए शुभ एंड उर्वी के नाम। कल्याणी हरी जी, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड ललिता कहती है, अरे मैं भूल गई, आज गुरुवार है। चलो सुनीता और बाकी जो कोसी मोती फैमिली उन सब के लिए गाना हो जाए।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: भाई ये दिन आना था आ गया और हम भी आ गए आपका साथ देने के लिए। और यहाँ पर कई सारे गीतों की फरमाइशें आई थी। सत्य पे सत्ता फिल्म का जो गाना है वो मेरे साथ मेरे पास है और जितने भी दोस्त इस समय हमारे साथ हैं उनका नाम ले लेती हूँ। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। वी हैव केविन जगरू, वी हैव पामेला, मिस्टर नुरैदीन फ्रॉम फ्रांस, सरोज राज, नजीमा, याना, तीशा, ज्योति चमन, सिद्ध, सांडो, आशा, किरणपुरी फ्रॉम वैंकूवर कैनेडा, एंड ऑफकोर्स हमारे साथ हैं बबीता बुलाकी, हमारी प्यारी सी परी जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ी, एंड वी हैव धनुष बाब अपना, रुख बहार, रेणुका जग्गू, और साथ में यहाँ पर हमारे और भी दोस्त हैं जो साथ दे रहे हैं। शिवम जी कैसे हो? चलो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कौन है, चलिए देखते हैं। पूजा, प्रिया कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो गाना होगा वो आपके लिए सवेरे वाली गाड़ी से लेकर आए हैं हम, और ये गाना हम रागिनी जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो साथ दे रही हैं। और करुणा हमारे साथ हैं, कहते हैं भाई सिलेक्शन का तो जवाब नहीं। नहीं नहीं नहीं, जवाब किसी का भी नहीं, जवाब इन सिंगर का नहीं है भाई, कमाल के गायक हैं। चलिए सुरेश भाटकर आशा जी की आवाज़ में सुनते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: चलिए जी, ये है आपका सुहाना सफर। और सुहाना सफर में जो अगला गाना होगा, वीना फकीर, किशोर नायक को साथ में नीलिमा, उस्ना बानू, उनकी बेटी नूर फतिमा इस समय टिकटॉक में हमारे साथ हैं, हमें लाइव देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं, हाय। और साथ ही साथ सूबी एंड वी हैव चांदराज फ्रॉम फिजी आइलैंड्स, हाय। तो वेदना की तरफ से विज के लिए गाना होगा, चाची जुबेदा हम के संगे चले गाना तोहर खतिन। रोडोमैच आपके लिए भी, साधना कुसना वीमा पेंचा आयशा आ गई, आयशा चलो उनके लिए गाना होगा। और यहाँ पर एलविसा हमारे साथ हैं, देविका किस्तामना हमारे साथ हैं, एंड चलो गाना आपके लिए होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम अंदिनी के नाम डेडिकेट करेंगे गाना, हाय। और अभी शिरिन हमारे साथ है, शिरिन राम जोन, उनके लिए भी गाना होगा। ब्रिंदा नक, लैला मुदारन, सब अनीता दामिनी खद

और वहीं पे हमारे साथ गाना, किसी ने कहा है कि प्लीज़ कोई सैड सॉन्ग सुनाइएगा, वो तो सुनाऊंगी लेकिन तब नहीं सुनाऊंगी जब आप सैड होंगे, जब आप खुश हो जाओगे तब मैं सुनाऊंगी, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ पर कहते हैं लेडी जागुआ को देखना पैरट नहीं कहते, हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। अभी गाना जो होगा वो हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। चांद राज कहते हैं मौसम कहाँ है यहाँ पे, तो अभी तो हम विंटर में हैं, बाहर समर है लेकिन स्टूडियो के अंदर विंटर है, ऐसा कुछ कह सकती हूँ। चले इसी के साथ हमारा अगला गाना होगा आपके लिए, और गाना है, कौन सा गाना होगा, फिल्म का नाम है रॉकी। क्या यही प्यार है भाई, ये प्यार ही तो है, आप और हम साथ में हैं और यहाँ बैठे बैठे हम दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाते हैं। आजकल फिजी में हमारे बहुत बहुत सारे दोस्त हैं, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। रुजिदा बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ दे रही हैं आप हमारे। आप बताइए आप दुनिया के किस कोने में हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही हैं। चलो फिजी कनाडा ये सब तो हो गया, आप कहाँ से सुन रहे हो बताते चले। हमारे टिकटॉक पे इस समय हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, अगर आप चाहें तो फैमिली को भी कहकर हमारे इस प्रोग्राम को वो फॉलो कर सकते हैं।

0: चलिए इसी प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे और आपका साथ देंगे क्योंकि हमारा जो अगला गाना होगा वो हमें लेके जा रहा है किधर लेके जा रहा है एक बजे के समाचारों की ओर और ये वाला जो गाना है ना हम खास तौर पे आयशा के नाम चला रहे हैं और उनके साथ शैलेंद्र दिनेश गोपी रोहन सुमा निजाम लीना वैदेह विद्या इन सब के लिए दीप्ति जी भी आ गई है साथ देने के लिए और साथ में यहाँ पर शांता सुकलिंगम का भी वेलकम करते हैं और साथ में है अनुराधा जो साथ दे रही है हमारे
1: You're listening to RM3 Radio Man

0: बुढ़ा मिल गया, हाय बुढ़ा मिल गया, हाय मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया।
1: घड़ी बिलाते चले, समय दिन के ठीक एक बचा है। संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे गीता, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नितुषा, सभी को हमारा नमस्कार। छोटे और मध्यम उद्योगों को नई रफ्तार देने के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। करीब 10 साल से बिना किसी बड़े बदलाव के लागू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट में अब व्यापक संशोधन किए जाएंगे। उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य उन प्रशासनिक अड़चनों को दूर करना है जिनका सामना मॉरिशस के ठेकेदारों को रोजमर्रा के कामकाज में करना पड़ता है। मंगलवार को संसद में एक प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री आदिल अमियामिया ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। कॉमनवेल्थ खेलों में एथलेटिक्स में राशेल क्लॉपफेनस्टाइन ने कल शाम शानदार प्रदर्शन किया। वे 800 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है। ये फाइनल इस शुक्रवार शाम खेला जाएगा। पारा एथलेटिक्स में 1500 मीटर T54 के फाइनल में मॉरिशस की नोएमी अल्फोंस गिर गई। रेस के दौरान कनाडा की खिलाड़ी से टक्कर लगने के कारण वे ट्रैक पर गिर पड़ी। इसके बाद मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। मामले की समीक्षा के बाद जजों ने कनाडा की खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया और दौड़ दोबारा कराने का फैसला लिया। आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जा रहा है। इस पूरे महीने के दौरान भक्त पूजा पाठ यज्ञ हवन का आयोजन करते हैं। श्रावण मास हमें प्रकृति आस्था और भारतीय परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। और विदेशी खबरों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी हमला किया है। इस हमले में कई इलाकों में जोरदार विस्फोट हुए और बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। कीव की विभिन्न हिस्सों में मिसाइल हमले के बाद आग लगने की खबरें भी आ रही हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही इसकी आशंका जताई थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। त्रोबिश होद त्रियोले में 73 साल के 73-year-old के श्री मुईशंकर अभिलक, जो ज्ञान से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी सरिता अभिलक के घर थ्रोबिश होद त्रियोले से उठाकर त्यमिनिस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: वो कहते हैं ना थप्पड़ से डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे प्यार से डर लगता है जो पता नहीं कितने सालों तक दीवार में चुनवाए गए हो, और जब आत्मा बुलाती है प्यार के लिए तो ज़रा मुश्किल होता है। आपने मूवी देखी ना नीलकमल, उसमें वो हीरो हीरोइन होते हैं, फिर हीरो जो होता है उसको चुनवा दिया जाता है, फिर वो बार बार गाना गाता है, हीरोइन जो है उसकी शादी हो जाती है, रात को ऐसे निकलती है नींद।

0: में चलती हुई आती है, कहां कौन बुला रहा है भाई, ऐसा प्यार आपको मुबारक। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं तैयब के लिए, अब्दुल के लिए, जेवीना, पूनम जालिम, किंग यूजर, हाय। चलो जी, सुरवीर संध्या, इंदु, अकबर, तेज, सनातन कहते हैं कि कल अक्षय आदर्श का बर्थडे है, सो आदर्श को हैप्पी बर्थडे। एंड एक के अनोखी समत सब जुड़े हुए हैं, वहीं पे केशनी कुमार फिजी से हमारे साथ हैं, एंड अकबर जो है पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। कैसे हो जी, वेलकम आपका। हाय लोलीता, कैसे हो आप? खुमन बोरा, आपका स्वागत है, नमस्कार। तुझको पुकारे मेरा प्यार, चलो रिया बुधन आ गई और साथ में यहाँ पर आ गए हैं कौन, देखते हैं। हाय, ये हैं जोहान, हाय जोहान। नेक्स्ट गाना बेटे रवि के लिए, उसकी शादी की सालगिरह है, 27th एनिवर्सरी, जय सिंह के लिए गाना होगा, एंड साथ में ये गाना होगा दीपगर, हाय कैसी हो, आ गई, चलो देर से सही आई तो सही। संजय यादव, नमस्कार, स्वागत है आपको, एंड रीटा आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, हाय चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। आदित्य हमारे साथ हैं और यहाँ पर गाना, भाई आदित्य हमने बहुत बार आपको बोला, कल भी बोला था कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं, नए गाने नहीं चलाते बच्चा।
1: You're listening RM Free Radio Radio Radio
0: और ये गाना होगा ईशा नागा के नाम, मैंने ऐसे न्यू गाने, यानी कि हम लोग यहाँ पर 80s के ऊपर नहीं जाते। हम लोग यहाँ पर 80s, 70s, 60s के गाने चलाते हैं। समझ गाना आपके लिए है, और पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप लोग अब जब अपना मैसेज भेजते हो तो प्लीज़ ज़रा नाम भी भेज दिया करो, प्लीज़ कुछ ऐसे अरीबो गरीब नाम रखते हो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती। थैंक यू।

0: दुखी पे दुखी हो सत्ते पे सत्ता हो भाई हम साथ हैं ये मायने रखता है
1: सुहाना सफर
0: 1:17 हुए हैं आप विदिता का साथ दे रहे हैं और हमारा प्रोग्राम चल रहा है लाइव टिकटॉक पर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मनोरंजन को अपने दिल में जगा देने के लिए नेक्स्ट गाना होगा कवि किशन के लिए कल्याणी सिंह हेमा शंकर नीलेश नॉटी नीलेश देवी क्यानी रेखा गोपोल वही मैं कह रही थी जब से मैंने बताया मैं अमिताभ बच्चन की फ़ैन हूँ ना सारी रेखाएं इधर ही आ रही हैं तो जितने भी रेखाएं सुन रही हैं थैंक यू सो मच और यहाँ पर गाने की एक के बाद एक फरमाइश आ रही है नए गाने नहीं चलाते पुराने गाने चलाते हैं हाय श्रेया कैसे हो और यहाँ पर गाना होगा तनवीर खालिद के लिए ललिता चरण कैसे हो जी बड़े दिनों के बाद याद किया आज तो लेकिन कोई बात नहीं नाम तो याद आया ना हमारा आ ही गए हेमा शंकर उनकी बेटी और उनके बेटे के लिए गाना होगा वहीं पे यहाँ पर गाना होगा किसके लिए राज के लिए एंड हमारे साथ है हमारी क्यूटी कैसे हो जी सब बढ़िया डैनी रोजा हाय डैनी जगरू गुडलैंड से हाय प्रसाद प्रिया नीलेश फकीर सभी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक गाने की फरमाइश आई थी मैंने सोचा अभी चला दूँ क्योंकि वहाँ पे सुबह के 2 बजे हैं

0: ना सफर खाना सफर।
1: वेल फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि आजकल हमने फरमाइशें लेना बंद कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पर जब गाने की फरमाइश आती है तो बार बार वही गाने मांगते हैं, बार बार वही गाने आते हैं, कोई नया गाना मांगता है। इसीलिए हमने अपना गाना रखा है यहाँ पर, चुन चुन कर हम लाते हैं। एंड अगर आप इन्हीं गीतों में से कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। चलिए, हमारी स्वीट एंजल हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। देवी जी कहती हैं क्या गाना लगाया, हमें तो रोना आ रहा है। और अनिष्ठा राम तोहल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी, हमारा तो आफ्टरनून हो गया। दिव्या रघु जी, कैसे हो, आपका भी हम स्वागत करते हैं। एंड लविंग द सिलेक्शन, ये है दीप्ति, थैंक यू। जीवन सरजू, कैसे हो जी। सीताराम सीताराम सीताराम, चले जी यहाँ पर। अच्छा, तो शर्मा जी कहते हैं मैं इंडिया हरियाणा से। ओके जी, आपका वेलकम है जी, थैंक यू। थैंक यू नीलेश, थैंक यू सो मच। यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आस्था, सिद्धि और नव के नाम। ओके, मेरे ख्याल से यही लिखा है आपने। सुनीता फ्रॉम गुडलैंड, मासी फ्रॉम मलेशिया, हाय पीपल फ्रॉम मलेशिया जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एम जे वेंस, कैसे हो, कहते हैं काम चल रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। देवी हमारे साथ हैं, प्रियासी बालक हमारे साथ, विमला पाडू, वी हैव द नेक्स्ट गाना जो हम डीएस इवेंट्स के नाम डेडिकेट करेंगे, यानी कि दिवेश और शेन के नाम। भाई आप भी काम में लगे हो, लगे रहो, खुश रहो और ऐसे ही गाने सुनते रहो। विशाल एंड डोमिनो, आपका नाम डोमिनो है, अरे यार असली नाम लिख दिया करो। चले इसी के साथ, कौन सा गाना आएगा, ये मेरे फेवरेट गीतों में से एक है, यू गोना लव इट, है ना प्रिया।

0: खाना सफर खाना
1: सफर। चलिए जी, और आधा घंटा रह गया हमारे प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए, तो कुछ गाने तो हम चला ही लेंगे प्रोग्राम में। वेलकम करते हैं हम रोशनी का, फतिमा, विजय बगवानी जो कि हॉलैंड से हैं, वेलकम, स्वागत है। मेरी ग्रेस हाय, साथ में है नंदा, प्रिया, पूरन, शमा, बिंता, शारदा कासी, सरिता चातन, और यहाँ पर गाना होगा ललिता चरण, कहते मेरे पति देव के नाम। ओके, ये पति देव हैं या पति देव के नाम, चलो कोई नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा, कहते हैं हाय मैडम, मैं नेपाल से हूँ, कैसे हो, और आपका नाम सरकार है, वाह क्या बात है। चलिए तो ऐसे में हम नेक्स्ट गाना जो है पूजा के लिए, उनकी नानी जी के लिए जो ख्वाहिश से, उनकी मामा इंदिरा और उनकी मामा सिमी के नाम, आयशा कहती हैं एक डांस हो जाए, पहले रुला देते हैं फिर डांस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाना होगा आपके लिए फॉर एस के, यानी कविता स्वरूप के नाम, हाय। और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर डीनो, डीनो का कल बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू डीनो, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो इसी के साथ आप हमारी तरफ से मुंह मीठा कर लेना। तो ऐसे में अभी जो गाना है, देखो यहाँ पर हम, हमारे पास भाई, आप सरकार जी, आप बहुत ज़्यादा मैसेज भेज रहे हो, एक मैसेज भेजा हमने देख लिया, थैंक यू सो मच, हमने देख लिया, वक्त भाग रहा है, हम भी भागते हैं, गाना सुनते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, ये तो था आपके लिए शरारत फम का गाना, और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो इस गाने के पीछे दीवाने हो गए, कह रहे अरे ये गाना चला दिया, ये गाना चला दिया। कितनों ने तो अपने दिल के जख्म खोल दिए और कहा कि भाई हमारे भी कुछ फसाने थे और ये गाना जो है एक याद बन के रह गया, हम ऐसे यादों को भुला कर कुछ और करना चाहेंगे। आपका फ़ोन है, उठा लो। पिक अप। ये गाना सुनीता सातमन की बेटी रीमा आशना करिश्मा और मिश्ती के लिए जो गुडलैंड से हैं। यश के लिए वी हैव रेखा रेणुका शीला बरिंदर जी, सत श्री अकाल, आप हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम जर्मनी। और ये गाना हम सोनाक्षी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये गाना होगा फॉर आशी। हाय आशी, कैसे हो आप? रेखा जी कहते हैं मेरे भाई डॉक्टर उत्तम और सरोज के नाम। ऑलराइट, कहते हैं मोतीबेलो मॉल से सुन रहे हैं आपको, और काम करें किचन में, क्या बात है।

0: ना सफर, सिखाओ ना सफर।
1: और इस गाने में फिर अमिताभ बच्चन पानी में गिर जाता है और नीचे वो एक क्रोकोडाइल से फाइट करता है, फाइट करके बाहर आ जाता है। इसलिए तो हम अमिताभ बच्चन को इतना प्यार करते हैं। क्रोकोडाइल को भी वो ढुसुम ढुसुम करता है ना। चलो यहाँ पर हम आपके स्ट्रेस को ढुसुम ढुसुम करने की कोशिश कर रहे हैं। मंजुलिका, रीना, अविनाश सब साथ में जुड़े हैं। विंती गोपोल, कैसे हो विंती? गाना जाएगा आपकी मम्मी के लिए। कहते हैं कि मेरी मम्मी तो अभी हॉस्पिटल में है, तो हम उनके लिए प्रे करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। नजीमा कहती है बेटी सानिया के लिए गाना चला दो। ओके, चलाते हैं। आरती हमारे साथ हैं। वर्षा, ओके, गाना जाएगा आपके लिए। और हाँ, आज आप लेट हो गए। ऐसे कैसे लेट हो गई? हाँ, थैंक यू सो मच। और ये कलासिमिया कौन है भाई? बहुत सारा प्यार भेजा हमारे लिए, थैंक यू सो मच। गाना जाएगा माया जी के लिए जो गर्मा गर्म बिरयानी खा रही है। और साथ में यहाँ साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एंड नेक्स्ट गाना जो होगा विकास बालू के लिए। हाँ बिल्कुल विकास जी, वो क्या है ना कि इंसान जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि उसका मूड हमेशा अच्छा रहे। कभी कुछ गाने होते हैं ना बॉडी में ऐसे जैसे करंट मारते हैं, और जब वो करंट लगते हैं ना तो जहाँ जहाँ पर वो फुल स्टॉप होता है ना उनको थोड़ा सा वो जगा देता है। तो ऐसे आपको भी करना चाहिए। कभी आपने किसी गाने पर डांस किया है? नहीं, गाना चल रहा है और आप एंजॉय करें। मैं हर एक गाना एंजॉय करती हूँ, मैं भजन भी एंजॉय करती हूँ, मैं तो ज़ोर ज़ोर से गाती हूँ, कोई देखे ना देखे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ना अपने आप को खुश करो, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, फिर देखना आपको ना और किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रहेगी। ट्राई इट। चलो यहाँ पर यान मेरे दोस्त सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। कैसे हो रिकेश? ओह माय गॉड मेरा बच्चा, बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड सेंडिंग यू लव एंड सेंडिंग यू बहुत

0: सारा प्यार एंड लॉट्स ऑफ हग्स. थैंक यू हरिकेश. एंड साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा कहते हैं चलो डांस कराओ ना वरना बिरयानी हजम कैसे होगा. बेटा पहले थोड़ा सा हम रो लेंगे क्योंकि नेक्स्ट गाना जो है ना थोड़ा सा रोमांटिक है, तो ये गाना उनके लिए. और साथ ही साथ ये गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. ये है बिल्ला लेवू. बिल्ला लेवू कैसे हो बिल्ला लेवू, कहाँ से हो. चले गाना कौन हा कौन मिस्टर लव के लिए और बबीता के लिए भी. एंड वी हैव अ बिग हेलो फ्रॉम टोरंटो कनाडा. आप सोए नहीं.
1: ओरल फ्री रेडियो रेडियो रेडियो.
0: चलो शवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. थैंक यू अमिता हराधन, आपका भी स्वागत करते हैं. थैंक यू अविनाश, आपका हेलो हम फिर से हेलो बोलते हैं या कोई दूसरा होगा तो अगेन हेलो एंड हेलो एंड हेलो हेलो हेलो. थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. और हमारे भाई हमारे दोस्त अवनीश के लिए कहते हैं हाँ तो कैसे. अरे वैसे ही जैसे पहले थे. हर्षा कैसी हो. और यहाँ पर हमारे साथ हैं बिरमा माटा पलट. आज सावन का पहला दिन है तो हाँ बिल्कुल. थैंक यू सो मच हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए. संजय बुधवा नमस्ते आपको.

0: चलो दिल से दिल अगर मिल गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। सलोनी दोहा जी साथ में है, लीना हॉल कोरी उनका कल बर्थडे है, सो अभी से उनको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। प्रतिमा एंड विनय सिंह साथ हैं, वी हैव बाबा साथ में, मंजुलिका कवले सर हैं, जोरा कहती है बहुत दिनों के बाद जुड़ी हुई हूँ मैं प्रोग्राम के साथ, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना होगा आपके नाम।
1: RM3 Radio.
0: और ये गाना मंजुला कवले सर की तरफ से उनके हस्बैंड संदीप के लिए जो कौंदेमास पावे से हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं हम फॉर बेपो, कैसी हो। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तरुण जो एक्चुअली हमें बाय बाय कहने के लिए आए हैं, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। चलिए इसी के साथ अगला गाना हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं, डांस करना पसंद करेंगी।

चलिए भाई महबूबा तो आ गई, अगले गाने के साथ जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, महबूबा पे डांस करने के लिए। यहाँ पर इंदिरा जी आपका हम वेलकम करते हैं, थैंक यू। और गाना जो होगा वो होगा आपके लिए कोको की तरफ से, टू ऑल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, प्रेमी अनुष्का, इंदिरा नी, इंदिरा तरुण, सभी साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगला गाना आपके लिए, मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात करेंगे हम कब, मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। हाय जयालक्ष्मी, थैंक यू सो मच, वनकम। अभी जो नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए होगा, एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे वर्षा आपके लिए। चलिए तो चलती हूँ प्रिया, आपसे फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। कॉमनवेल्थ खेलों में एथलेटिक्स में राशेल क्लब फेंस्टाइन ने कल शाम शानदार प्रदर्शन किया। वे 800 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। ये फाइनल इस शुक्रवार को शाम खेला जाएगा। पैरा एथलेटिक्स में

1500 मीटर T54 के फाइनल में मॉरिशस की नोएमी अल्फोंस गिर गई। रेस के दौरान कनाडा की खिलाड़ी से टक्कर लगने के कारण वे ट्रैक पर गिर पड़ी। इसके बाद मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। मामले की समीक्षा के बाद जजों ने कनाडा की खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया और दौड़ दोबारा कराने का फैसला लिया। आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने के दौरान भक्त पूजा पाठ यज्ञ हवन का आयोजन करेंगे। श्रावण मास हमें प्रकृति, आस्था और भारतीय परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। और विदेश खबरों में, अर्जेंटीना के पश्चिमी प्रांत में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये हेलीकॉप्टर जंगलों की आग बुझाने के अभियान में शामिल था। अभी तक हेलीकॉप्टर हादसे का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ देर में शोक समाचार। पाल्मिस्ट्रोड न्यूग्रोव में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड की श्रीमती धनवती रामदेनी पैदाश नाम कालीचरण और जुनानी नीता से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर बाद के 3:30 उनके घर पाल्मिस्ट्रोड न्यूग्रोव से उठाकर रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। थोबिश रोड थ्रियोली में 73 साल के 73 ईयर ओल्ड के श्री मुईशंकर अभिलक जो ज्ञान से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 उनकी पत्नी सरिता अभिलक के घर थोबिश रोड थ्रियोली से उठाकर तेमिनिस थ्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: मुख्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम। हर सप्ताह यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, साप्ताहिक कार्यक्रम है, जहाँ पे हम रंगमंच के बारे में बातें करते हैं। रंगमंच की दुनिया में जो भी मतलब हमको देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, इन सभी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और कहा जाता है कि हमारे छोटे से मॉरिशस देश में कलाकारों की कमी नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे नाटक का मंचन होता है, स्थानीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अभी नाटक जो है मंच से निकल के अब पर्दे पर आ गए हैं, मतलब सिनेमा का भी बोलबाला चल रहा है हमारे देश में, और हमारे कलाकार भी इसमें अभिनय कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अभी हाल में ही बूढ़ी काकी नाटक खेला गया। बूढ़ी काकी नाटक जो है, कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी, लेकिन हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इसका मंचन हुआ और उन्होंने सहायता ली है बाकुआ रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा। गत सप्ताह आपने कार्यक्रम देखा और

आपको बहुत अच्छा लगा ज़रूर। और ये आपको बता दें कि अगर आपने नाटक नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, या फिर बूढ़ी काकी कहानी पढ़ लीजिएगा। आज हम बात करने वाले एक बार फिर से बूढ़ी काकी नाटक जो अभी हाल में खेला गया है, और उसका एक पात्र हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई है, आप है मीनाक्षी दोमा। मीनाक्षी जी, आपका हम स्वागत।

0: बुद्धिराम,
1: बुद्धिराम, हाँ जी, बुद्धिराम का किरदार निभाया है, तो उनसे भी बातें होगी थोड़ी देर में। अभी के लिए आपसे हम शुरू करते हैं। आपने मीनाक्षी दोमा, आपने रूपा का किरदार निभाया है, एक बहू है
0: जी।
1: गत सप्ताह हमने कार्यक्रम के बारे में बात की, हमने बहन जी अंजलि चिंतामणि के साथ बात की और आदर्श से भी बात की, उन्होंने किस तरह से, किस उद्देश्य से नाटक का मंचन किया, नाटक का जो कार्यक्रम है उन्होंने रखा था। अभी आपसे तुरंत आपसे आपके किरदार में हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए, बहू किरदार के बारे में बताइए।
0: सबसे पहले मैं बहू थी बूढ़ी काकी की नाटक में, और मेरा ये था कि मुझे बूढ़ी काकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टू एन एक्सटेंट कि मैं उसको खाना भी नहीं देती, दो रोटियों के लिए खड़ी कोटी सुनाती हूँ, और जैसे कि उसका मैं अपमान करती रहती हूँ उसमें, और ये कभी कभी भूल जाती हूँ कि वो भी एक बुज़ुर्ग है, हालांकि वो मेरी माँ नहीं है लेकिन किसी की माँ तो है। सो मेरा बस इतना था कि सबसे पहले मैं अज्ञानता में जीती हूँ, फिर बाद में हृदय परिवर्तन होता है जब मैं वो देखती हूँ, जब रूपा वो देखती है कि उसके कर्मों की वजह से एक बूढ़ी महिला जाके जूठे पत्तलों को चाटती है। तो ये इतना था।
1: आपने कहानी पढ़ी थी पहले
0: जी,
1: और आपको कहानी कैसा लगा?
0: एक तो मर्मस्पर्शी है, यथार्थवादी कहानी है, क्योंकि हम आज भी समाज में देखते हैं कि बस जब एक पर्व आता है तभी हम अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं या फिर उनके नाम का एक स्टेटस लगा लेते हैं, बाकी के जितने दिन बचते हैं साल में हम उनको निग्लेक्ट कर लेते हैं, या फिर उनको उन लोगों के साथ बैठकर दो मिनट बातें करने का भी मौका नहीं मिलता है, या फिर सोचते हैं कल हम बात कर लेंगे, या बुढ़ी कितना हमें बुढ़ा या बुढ़ी हमें कितना सता रहा है या सता रही है, कुछ ऐसे। ऐसा है कि आज भी चाहे कि हम बोल रहे हैं कि 2026 में है, लेकिन आज भी वो संकीर्ण मानसिकता है कि अभी तक लोगों को बेसिक चीज़ें, आदर सम्मान प्यार दुलार जैसी बेसिक चीज़ें नहीं पता, अगर पता भी होता है तो वो अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पर उसका प्रयोग करती है।
1: आप एक नौजवान है, एक युवती है, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहिए, खास तौर पे किस तरह से हम अपने बुज़ुर्गों को मान सम्मान करते हैं, और आज की इस टेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे हैं, आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जी रहे हैं, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी कई हद तक नौजवानों को प्रभावित कर रही है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाट्य रूपांतर हुआ, उसका मंचन भी हुआ हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा, और वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इसका मंचन हुआ था, सिर्फ कौन सा था वाकवा में, और मीनाक्षी दोमा ने बहू का पात्र निभाया और उनके पति के रूप में बुद्धिराम संजय बखूरी जी हमारे साथ है। संजय बखूरी जी, आप उनसे परिचित है ही, क्योंकि संजय जी रेडियो में काम करते हैं, RM2 में काम करते हैं, कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है आपकी, आप एक ही जगह पर अनेक पात्र निभा सकते हैं। तो संजय जी, आपका हम स्वागत करते हैं।
2: जय सियाराम नितेश जी।
1: जय सियाराम।
2: रूपा नमस्कार।
1: तो आपने बूढ़ी काकी में नाटक में काम किया है, वही प्रश्न जो मैंने रूपा जी से, मतलब मैं मीनाक्षी जी से पूछा नहीं, वो क्या होता है कि जब कोई कलाकार नाटक में भाग लेता है तो वह उस पात्र का नाम ले लेता है।
2: संजय को मुन्ना भाई कहते हैं ना, उसी प्रकार पूरी दुनिया अब रूपा से नाम से इन्हें पुकार देंगी।
0: अब मैं बुरी बहू बन गई
1: हूँ। तो संजय जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, तो आपने बूढ़ी काकी कहानी पढ़ी है पहले?
2: अगर आपकी इजाजत हो तो एक थोड़ा सा फ्लैशबैक करें।
1: बिल्कुल।
2: हम बहुत ही छोटे थे और रेडियो पर एक प्रोग्राम चल रहा था, हवा महल। हम जानते हैं कि वो हवा महल कौन पेश करते थे?
1: आप बताइए।
2: हरिनारायण महावीर।
1: अच्छा, चाचा जी हमारे।
2: तब जब हम उस बाल अवस्था में हम सोचा करते थे कि एक दिन हम भी जाएंगे।
1: क्या बात है?
2: हम भी जाएंगे, एक मंच पर बैठेंगे और हम भी एक प्ले में, एक नाटक में काम करेंगे, और हमें भी बुलाया जाएगा रेडियो पर उस नाटक के बारे में बात करने
1: की। क्या बात।
2: और देखिए आज यहाँ इस मंच पर बैठे हुए हम आपके चाचा जी को नमन करते हैं।
1: क्या बात है, अभी तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनको हम नमन करेंगे।
2: जो जो आधारशिला उन्होंने

0: रखा था, आज उस शिले पर आप बैठकर वही काम आगे बढ़ा रहे।
1: ये तो बुजुर्गों के की कृपा है, आशीर्वाद है। एक बार फिर से वही प्रश्न है आपसे। हाँ,
0: तो बुद्धिराम,
1: बुद्धिराम
0: की भूमिका
1: नहीं, उससे पहले कहानी आपने पढ़ी है पहले से?
0: हम तो नतमस्तक हैं आप जैसे लोगों के सामने जिन्होंने स्कूल में हिंदी लिटरेचर किया। हम जैसे आप जैसे भाग्यशाली नहीं हुए, हमने जो स्कूल में साइंस किया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी भी गए तो वही किया। लेकिन जब वापस आए और हमने देखा कि हमारी रुचि कला में ज़्यादा है, एनिमेशन में ज़्यादा है, प्रस्तुतिकरण में ज़्यादा है, फिलोसोफी में, दर्शन में ज़्यादा है, तब हमने पढ़ना शुरू किया हिंदी, दर्शन, इंडियन फिलोसोफी। और तब हमारे सामने आए सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्णा, विवेकानंद, गांधी, ये सब थे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे। लेकिन लेकिन लिटरेचर में भी रिफॉर्मर्स हुए हैं और उनमें एक निकले हैं
1: प्रेमचंद जी।
0: जो कार्य गांधी जी ने किया राजनीति के एक क्षेत्र में, वही कार्य प्रेमचंद जी ने किया संस्कृति के क्षेत्र पर, लिटरेचर के स्तर पर। और जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है, तो हम समझते हैं कि दुनिया भर लोगों के सामने ही इसको रखना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदर्श भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, द होल सिटोल फैमिली, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि प्रेमचंद जी की ये कहानी को दुनिया के सामने रखें।
1: आप लोगों की बात बताएं, हम बैठे हुए थे व्यूअर्स के बीच में, जनता के बीच में, और काम कर रहे थे वैसे एमबीसी की ओर से, हम शूट कर रहे थे। हमारे बगल में दादी जी बैठी हुई थी, बहुत सारी दादियां बैठी हुई थी, बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो हाँ, जैसे एक नाटक जो है एक इस तक एक उसका जो लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर उठा और थोड़ा सा मार्मिक होने लगा, भावनात्मक मतलब रस बहने लगे, तो दादी जी की आंखों से मतलब आंसू निकलने लगे। हम सुन रहे थे लेकिन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये लोग कनेक्ट हुए नाटक के साथ, ये लोग कनेक्ट हुए पात्र के साथ। आपके देखने में समाज में अभी तक बूढ़ी काकी जैसे व्यक्ति है?
0: अवश्य है, अवश्य है। ये बात नहीं कि खाने की कमी है, खाने की कमी के जरिए प्रेमचंद जी ने आज के समाज में जो कुछ बीत रहा है, अटेंशन की कमी। आज पूरी दुनिया में नौजवान दुनिया भर से कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज क्या पहना है, उन्हें पता है कि सलमान खान आज सुबह को नाश्ते में क्या खाया, लेकिन क्या दादी ने खाया ये पता नहीं, बूढ़ी काकी उनकी तबीयत ठीक है या नहीं ये पता नहीं। तो अगर आप हमसे पूछेंगे हैं, अवश्य हैं, अवश्य हैं। हो सकता है कि चंद गिने चुने लोगों के पास खाना ना हो, लेकिन हर एक घर में ऐसा कोई पात्र है, ऐसी कोई दादी हैं, चाची हैं, जिनको हम भूल चुके हैं। दुनिया से संपर्क रखते हैं, दुनिया के लाइक्स, डिसलाइक्स, हार्ट्स ढूंढते ढूंढते हम दादी के दिल को भूल चुके हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मॉरिशस में पूजा पाठ नहीं होती है, बहुत पूजा पाठ होती है। भगवान श्री राम जी शिव जी के चरणों के पीछे, कृष्ण भगवान के चरणों के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन कब हमने अपनी दादी के चरण को छुआ है, कब हो, कितने साल हुए, कितने दशक हुए, ये प्रश्न चिन्ह हम सबों को आईना देखकर अपने आप से पूछना है।
1: ये तो वाकई सच बात कही आपने, बूढ़े काके मतलब आई ओपनर है एक कहानी की तरह हमारे सामने, और अब नाटक के रूप में उसको खेला जा रहा है। एक बार खेला जा चुका है, एक बार फिर से खेला जा रहा है जिस समय हम बात कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड पर खेला जा रहा है। और उस समय हम बात कर रहे थे आदर्श के से कि नॉर्मली क्या होता है कि जब नाटक को खेला जाता है तो लोगों को हम बुलाते हैं, आइए आइए, हॉल को भरिए,

0: और चकाचौन मतलब एकदम बुक्ड फुल था। आप आपको पता था
1: हर प्रकार के लोगों से, बुजुर्ग भी थे, औपचारिक प्रोग्राम में भाग लेने वाले भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे। इससे पता चलता है कि इस नाटक के पीछे जो आकर्षण है कितना तेज है।
0: मीनाक्षी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, नाटक खेलने के बाद लोग आए आपसे मिले, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी?
2: सबसे पहले तो कुछ लोगों ने खूब गाली भी दी पात्र को, क्या ये बहू है, ऐसी बहू किसी को ना मिली, ये सब। लेकिन यही तो लक्ष्य था, क्योंकि मेरा किरदार ही नकारात्मक था। लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे से इसका मंचन हुआ है, बहुत अच्छे से मेरा क्रोध दिखा। एक ने बोला साहुल मूवी बिलफिलहाल बिकसा ब्याह वेकू ऐसा था। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए इस कमेंट पे या फिर मुझे दुखी होना चाहिए। लेकिन बहुतों ने इस बात को मतलब इस मंचन को पसंद किया। और साथ ही साथ अगर मैं वहाँ पर निगेटिव पूरे नाटक के जरिए के दौरान अगर मैं निगेटिव बनती हूँ तो ठीक है, और अंत में भी जब होता है कि वो हृदय परिवर्तन जब होता है वगैरह वगैरह, तब भी उन लोगों को लगा कि कम से कम जब जागो तब सवेरा देर, बेटर लेट दैन नेवर, ये वाला था। सो मेरे लिए इट वाज मोर लाइक मैं खुद ही भावुक हो गई थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं।
0: जी, आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है?
2: नहीं हुई है,
0: लेकिन सीख मिली है अभी,
2: बहुत मिली है अभी।
0: बहुत बड़ी सीख मिली है,
2: बहुत बहुत बड़ी।
0: आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ बताइए,
1: अगर आपकी इजाजत हो,
0: हाँ,
1: तो रूपा जी से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस एरा में ललिता पावर एक्ट्रेस थी, उस एरा के जितनी भी अभिनेत्रियां थी उनका नाम किसी को अभी तक याद नहीं है, आज याद नहीं है, लेकिन आज के बच्चे बच्चों को पता है कि ललिता पावर कौन थी
2: जी।
1: तो आप संतुष्ट रहे, आप खुश रहे कि पूर्व की इतिहास में आपका नाम अंकित होगा इस रोल के कारण, बाकी सब भूल जाए।
2: आपके मुंह में घी शक्कर,
1: अपना प्रश्न।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये थे साहित्य में देखें, इतिहास में देंगे कि तो रामचरितमानस जैसे बड़े काव्य में कई कई का नाम बहुत ही मतलब फेमस हो गया था, फिर उसके बाद आपने कहा कि ललिता पावर, फिर उसके बाद आपका नाम आने वाला है। आपने अपना रोल जो है किस तरह से उसकी तैयारी की?
1: सबसे पहले तो आदर्श ने कास्टिंग के समय पहले आपको देखा होगा और आप में वो काबिलियत देखी होगी कि आप रूपा का रोल कर सकती हैं, और मैं इनिशियली पहले इस प्रोग्राम में नहीं था। एक दिन मैंने आदर्श को फोन किया और मैंने कहा कि कुछ है, कुछ आ रहा है? तो उसने कहा एक छोटा सा रोल है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, मैं आपको भेजता हूँ। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, 3 बार बोलने थे। उन्होंने कहा कि भाई संजय आपके लिए छोटा सा रोल, मैंने कहा कोई बात नहीं, आते हैं। और जब आया और जब नाटक के रिहर्सल्स होने लगे, तब मैंने सोचा कि हाँ, जहाँ तक डायलॉग के हैं वो कम हो सकते हैं लेकिन भूमिका ज़बरदस्त है, उनका प्रेजेंस। तो इस तरह से तैयारी हुई, रीडिंग्स हुए, 4-5 बार हम मिले, और खासकर हम दोनों का, रूपा जी का जो मेरी पत्नी का रोल निभाती है, और हमने एक साथ काम किया और इट वॉज फन, अच्छा लगा। और खासकर देखिए, फिल्म की भूमिका एक है, रेडियो पर बात करना दूसरी बात है, लेकिन एक प्ले, एक नाटक के बीच कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं था। और जब आदर्श के सामने हमने काम किया, तब आदर्श ने कहा ऐसे करो, ऐसे नहीं। हमको लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन उनका जो निर्देशन था बहुत ही लाभदायक था।
0: आप नाटक में आने से पहले आपने फिल्म किया था, आपकी शुरुआत है फिल्मों से हुई,
1: हाँ,
0: मॉरिशन फिल्मों से हुई, फिर इसके बाद आप नाटक में, फिर हाँ, नाटक में थोड़ा सा अपनी रुचि दिखाई,
1: हाँ,
0: नाटक की एक्टिंग और

0: फिल्मों की एक्टिंग के बीच में आपने फर्क क्या देखा?
1: नाटक ये है कि आपको रेस्पॉन्स तुरंत मिलता है, आप लोगों के सामने इट्स वन गो, जबकि जब फिल्म में आप काम करते हैं तो टेक टेक होता है, आप छोटा सा करें छोटा सा करें छोटा सा करें छोटा सा करें, और आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद नहीं करनी होती है, आप स्क्रिप्ट यहां पर रखें और एक्ट करें, ये सीन समाप्त हुआ फिर से पढ़ें फिर से करें, जबकि नाटक में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये पहली बार। दूसरी बार दूसरी चीज, आपके सामने ऑडियंस है, तो जो भी कुछ आप करेंगे जो भी क्रिएटिविटी लाएंगे उस समय वो आपको पता चल जाएगा, जब ऑडियंस की आंखों में आंसू आते हैं या ऑडियंस ताली बजाते हैं, इंस्टेंटेनियसली आपको पता चलता है। और आप मुझसे कहेंगे मुझे नाटक फिल्मों से ज़्यादा नाटक पसंद आया, नाटक क्योंकि मंच पर जाना ये सब लाइट्स में और वो साउंड, फिल्मों में तो पोस्ट प्रोडक्शन बाद में होता है, आपको साउंड दिखाई नहीं सुनाई नहीं देता है, जबकि इस नाटक में जो आदर्श ने किया, डायरेक्शन, साउंड, स्मोक, गाने, द इफेक्ट, न सिर्फ देखने वालों के लिए लेकिन हम जो नाटक में थे, मैं तो आपसे कहने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि अंत में मैंने भी रोया था, मैंने मेरे भी आंसू गिरे थे, क्योंकि नाटक वैसा था, जब लोग अंत में खड़े होकर ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे, तब तो मैं रो दिया।
0: मीनाक्षी जी, आप जब इंदिरा जी मतलब काकी जो को पकड़ के उसके साथ आप रो रही थी और काकी जी पत्ते को फिर से छू रही थी, आप पत्ते को हटा के हाथ को पकड़ के उसको गले लगा के रो रही थी, सभी लोगों के दिल को आपने छू, वो वन सेकंड आपने सभी लोगों, मुझे मेरे ख्याल से आप दिल से रोए उस समय। इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक हिस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
3: नाट्य कला कार्यक्रम आप लोग देख रहे और सुन भी रहे। नाट्य कला कार्यक्रम रंगमंच से जुड़ा हुआ है। नाट्य कला, कला मतलब जो आपका टैलेंट होता है, जो आपकी स्किल होती है, और नाटक पर जहाँ पे आप उस टैलेंट को लोगों तक पहुँचाते हैं, दिखाते हैं, और जो भी सीख, जो भी कहानी जो है आप अपनी एक्टिंग द्वारा, अपनी कला द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हम बात कर रहे हैं बूढ़े काकी नाटक, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है, और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इस नाटक का मंचन हुआ था। सबसे बड़ी बात है संजय जी और मीनाक्षी जी, कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ, ये अपने आप में बहुत ही अक्सर होता है, लेकिन कहानी का नाट्य रूपांतर, हमने अंजलि जी से बात है कि आदर्श जी से बात है कि उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने नाटक कहानी का नाट्य रूपांतर किया, और आदर्श ने यह भी कहा कि आपने भी बहुत ही सहायता की इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए किस तरह से आप लोगों ने साथ मिल करके कहानी का नाट्य रूपांतर किया।
4: सबसे पहले ये संभव नहीं हो पाता अगर बहन जी अंजलि और भाई आदर्श का सहारा नहीं मिलता। सबसे पहले तो बहन जी ने हमें लिंक भेजा था बूढ़े काकी का, हमने देखा, अच्छे से पढ़ा, और ओरिजिनल वाला ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था। फिर उसके हिसाब से आपको सोचना पड़े, वहाँ पर आपकी सृजनात्मकता

0: घुस जाती हैं कहानी में, जब आपको सोचना पड़ रहा है कि इस जब कहानी तो नारेशन है लेकिन नाटक इट्स नॉट नारेशन, उसमें आपको वार्तालाप भी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर फिर देखना पड़ रहा है कि इस विशेष अनुच्छेद में कौन कौन से डायलॉग्स निकल पाते हैं। और ये भी ऐसा भी मतलब एक चैलेंज भी था कि हे भगवान अर्थ का अनर्थ ना हो,
1: कहानी की मौलिकता भी रखनी पड़ती थी,
0: और ये भी कि किस बात को वहाँ पे अच्छे से कोट करना पर मतलब ज़रूरी है और किस बात को छोड़ देना ज़रूरी है, कौन से, क्योंकि नाटक मतलब एक निर्धारित समय मिलता है तो उस निर्धारित समय में आप कितना लिख पाते हैं ये भी बहुत ही ज़रूरी है, और कितना बोल पाते हैं और उसमें उसको एनाक्ट भी करना पड़ता है। लेकिन उतना भी कठिन नहीं था क्योंकि एक तो प्रेमचंद जी की कहानियों में बढ़ा चढ़ा के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जो जैसा है उन्होंने वैसा ही चित्रित किया है, सो एक तरीके से उतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन अगेन अगर भाई का विशेष सहारा नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता, और उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट था दो सूत्रधार कठपुतली को यहाँ पे उसको जोड़ने का, जो जिसकी वजह से हमारा काम और भी आसान हो गया था। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बस जो नाटक है हम बस उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ ही साथ हम चाहते थे कि हम जो मतलब दिखाना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं उसके साथ वो भी सामने आए। सो एक टीमवर्क था और उसके साथ साथ मतलब कहानी के साथ साथ हमने अपने विचारों को भी व्यक्त किया है वहाँ पे, ये वाला उतना बड़ा चैलेंज नहीं था। इट वाज मोस्टली फन क्योंकि हम उस कहानी से जुड़ पाए 100%।
1: तो चलिए, ये वाला आपने कहा उतना चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन चैलेंजिंग वाला पार्ट के साथ आज हम चलते हैं, जहाँ पे आपने कहानी को उसका रूप नाट्य रूपांतर कर दिया, नाटक को पढ़ने लगा और उस किरदार को आप अपने आप को उस किरदार में आप अपने आप को ढालने लगा। किस तरह से आपने अपने पात्र की तैयारी की, आपने किसको देखकर, किसको स्टडी करके एक क्या कह सकते हैं, एक जो अच्छी नहीं है बहू, जो बूढ़ी बहू होती है उसको आपने स्टडी किया, उसकी तरह आपने एक्ट किया, आपकी तैयारी के बारे में
0: बताइए। तैयारी के पीछे भी मतलब ये इसमें बस मेरा हाथ नहीं है, बहन जी का भी हाथ है, भाई का भी हाथ है।
1: वो भी बुरी है क्या?
0: नहीं, लेकिन बहन जी मेरी प्राध्यापिका रह चुकी है।
1: अच्छा।
0: और जिस तरह से शुरुआत से ही उन्होंने साहित्य को हमारे सामने रखा है, समझाया है, जब ट्रेनिंग भी हो रही थी वो आ रही थी, हमें निर्देश भी दे रही थी, भाई थे साथ में, बोल रही थी कि इंटोनेशन इस प्रकार से होना चाहिए था, उस मतलब आप इस प्रकार से आपका चाल चलन होना चाहिए, ये सब बीच में आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मन में ये डालना है कि मैं मीनाक्षी नहीं हूँ उस समय, मैं वहाँ पर रूपा हूँ। सो मीनाक्षी कौन है? नाटक के दौरान या फिर नाटक की तैयारी के दौरान आपको अपना अस्तित्व पीछे छोड़ देना है और आपको उसको अपनाना है जिसका किरदार आप निभा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव और निगेटिव, आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, डायरेक्टर डायरेक्टर है, आपको बस उसमें घुल जाना है। कलाकार को पानी जैसे होना चाहिए, आप जिस भी पात्र में आपको डाला जाते हैं उसको मतलब उसका आकार आपको ले लेना है। और साथ ही साथ एक तो कहानी पढ़ना पड़ा, नाटक बार बार रीडिंग्स होते गए और आपको कभी कभी ये नाटक ने जो मतलब नाटक का एक वरदान भी बोल सकते हैं कि जब हम नाटक करते हैं तो हम ये बात की जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, दूसरों की सोच गलत है, वो निकल जाता है दिमाग से। सो जब ये निकल जाता है तो आप एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं, तब पात्र को अपनाना, उसको समझना और उसके चाल चलन के मुताबिक चलना वो बहुत ही सरल बन जाता है। और डेफिनेटली कभी कभी जब बूढ़ी काकी को घसीटना पड़ा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि चाची हमारी मतलब बहुत ही प्यार करती है हमसे, बहुत ही स्वीट है और एक मतलब
1: एक तरह से प्यार का रिश्ता हो गया है।
0: रिश्ता हो गया है।

0: उसको घसीट के वहाँ पर पटकना पड़ रहा है या फिर ये सब बोलना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी थी। बहुत बार ये बोले कि आपको चोट लगी है, नहीं मैं कर सकती हूँ, ये ऐसा था। तो घबराहट थी, डाउट्स भी थे, लेकिन रिहर्सल्स के साथ वो घटती जाती हैं। और जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं ना, तब सब गायब हो जाता है। वहाँ पर कोई इंदिरा जी नहीं होता है, वहाँ पर कोई संजय जी नहीं है, वहाँ पर कोई मीनाक्षी नहीं है, वहाँ पर बस बुद्धिराम है, रूपा है, काकी है और अन्य पात्र है।
1: और उस पात्र को निभाना
0: जी
1: है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि उस समय आप मीनाक्षी नहीं थी, आप रूपा थी, वह बहू थी। आप उसको नाटक की दुनिया में कहते हैं, नाटक के जोंगो में कहते हैं कि मेथड एक्टिंग, मतलब आप एक्टर नहीं, आप अभिनेता नहीं, बल्कि आप कैरेक्टर है
0: जी।
1: और उसको आत्मसात करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संजय, वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बुद्धिराम के पात्र की तैयारी कैसे की, कितने समय लगे आपको?
2: सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि आज मुझे पता चला कि जिन्होंने मेरी पत्नी की का रोल निभाया था, कि भूमिका निभाई थी, उनका नाम मीनाक्षी।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जो एक महीने से स्क्रिप्ट को मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मेरे लिए वो रूपा है। जब भी मैं रिहर्सल में जाता था, वो आप हमसे सहमत होंगी, जब मैं प्रवेश करता था तो रूपा
0: जी।
1: नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि मैं क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज में हम जब देखते हैं, क्लास में हम जब जाते हैं, तो जब डायरेक्टर दवी धवन को ले लीजिए, कोई भी बड़े डायरेक्टर को ले लीजिए, वो अपने एक्टर को पात्र के नाम से बुलाते हैं, ताकि वे उस पात्र में, उस रोल में अपने आप को डाले।
2: तो मेरी आदत यही है। और जब मैं रिहर्सल में भी जाता हूँ तो उसी वेश में जाता हूँ जिस वेश में मैं मंच पर रहूंगा, यानी कि कुर्ता धोती पहनकर रहा हूं, जिससे कि आप ना सिर्फ डायलॉग समझो, डायलॉग का उच्चारण करो, डिलीवरी करो, लेकिन अपने आप को बुद्धिराम के रोल में पाओ। तो ऐसे ऐसे करते करते आप देखेंगे, अगर सोमवार को आप आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुए होंगे। क्योंकि जब हमने पहला रिहर्सल किया था, तब से लेकर मंच तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत चेंजेस हुए, क्योंकि अनुभव आता रहा, एक्सपीरियंस आता रहा है, और उस तहत हम प्ले को ढालते गए, ढालते गए। इसीलिए जब लोगों के सामने पहुंचा तो दिल को छू गया वो। मैं तो रूपा जी को जिस तरह से उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले, जब तक कि सब कुछ ऑनलाइन था, क्योंकि रीडिंग चल रहा था, हम रिहर्सल तक नहीं पहुंचे थे, तो मैं सुन रहा था रूपा जी की आवाज़ को, मुझे पता नहीं था कि कौन है, लेकिन जब मैं सुन रहा था, मैंने कहा वाओ, ऐसी डिलीवरी, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बाद में जब एक एक एक श्रेष्ठ कलाकार आपके बगल में खड़ी हो जाती हैं, तो आपको भी अपना सर उठाना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
2: और इसके लिए हम आपके आभारी हैं।
0: मैं श्रेष्ठ कलाकार नहीं हूँ, मैं बस मीनाक्षी हूँ जो नाटक से बहुत प्यार करती है बस।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा। एक बार फिर से वही प्रश्न आपसे, आपकी तैयारी कैसे रही?
2: हाँ, पढ़ते पढ़ते, हाँ, ये काफी देर रात तक, आदर्श का एक भाई है नीरज
0: जी,
2: नीरज के साथ हम बैठते उनके स्टूडियो में, उनके ऑफिस में, और हमने सभी जो प्लेज हैं इस विषय पर, बोरिका के विषय पर, सभी के सभी प्लेस देखे और देखा किस तरह से मंचन हुआ है, कहाँ कहाँ पर परिवर्तन, किस तरह से अडाप्टेशन हुआ है डिफरेंट युग में, एरा में। तो उसके हिसाब से हमने सीखा, और ये सब देखने के बाद हमने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मकता को उसमें डाला, और फिर जो कुछ जो हमने सिनेमा में सीखा है, रेडियो पर सीखा है, वही वहाँ पर डाला, और एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब रहा।
1: वॉइस तो मॉड्यूलेशन तो हम रेडियो पर सीखते ही और करते भी है, लेकिन एक्टिंग की जो ट्रेनिंग,

0: आपकी कैसी थी, कैसी रही, क्या क्या सीखा
1: मंच पर? इससे पहले हम मंच में बस प्रस्तुतिकरण करते थे, ऑर्केस्ट्रा था, कॉन्सर्ट चलते थे, यानी कि स्टेज फ्राइड तो नहीं है क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन स्टेज पर एक्टिंग करना और लंबे लंबे डायलॉग्स पढ़ना ये एक नई बात है, और इसका श्रेय हम अपने अपने गुरु भाई मानते हैं, गुरु उनको आदर्श को जाता है। साथ साथ पिछले साल के दिसंबर महीने में हमने एक वर्कशॉप में भाग लिया था, 3 दिवसीय वर्कशॉप में, जहां पर टेक्निकलिटीज ऑफ एक्टिंग ये वहां पर हमने सीखा, वहां पर हमने देखा कैसे आपको ऑडियंस को पीठ नहीं दिखाना है, कहाँ खड़ा होना है जिससे कि मास्किंग ना हो, और कैसे चलकर एक स्टेप लेकर, 2 स्टेप लेकर फिर डायलॉग बोलना है। तो ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि आपने तो ये सब कुछ सिखाया। ओके, तो ये मंचन के दौरान ये तब हमें पता चलता है, देखिए देखो ये बात तुम्हें ऐसे नहीं कहनी थी, ये बात तुम्हें ऐसे कहनी थी।
0: देखिए नाटक तो हम देख लेते हैं, नाटक को हम एंजॉय कर लेते हैं, एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन नाटक खेलना एक अलग बात है, अपने आप में एक दुनिया है, अपने आप में एक मतलब एक बहुत ही बड़ा विषय होता है जो एक दिन में हम नहीं सीख सकते हैं, एक सप्ताह में नहीं, अभी मास में, एक महीने में नहीं सीख सकते हैं, बल्कि इसका डिप्लोमा डिग्री PhD लेवल के कोर्स तक जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक्टिंग के साथ साथ मीनाक्षी जी आपने बहुत कुछ और किया, लेकिन एक और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, वाकई जब हमने आपने आपकी एक्टिंग को देखा, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही सटीक थी, बहुत ही सुंदर, एक फ्लो की तरह जा रहा था, ज़रूर आपने किसी को आदर्श के रूप में, आदर्श के रूप मान करके आपने अपनी अपना अभिनय किया, आपके फेवरेट एक्टर्स में से कुछ नाम आप हमको बोलना चाहेंगे?
2: बहुत कठिन सवाल है, लेकिन राजकुमार राव, परेश रावल, और सुशांत सिंह राजपूत, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, और है सोच भी रही हूँ, अब जब समय आ रहा है बोलने के लिए अभी निकल ही नहीं रहे हैं नाम, और
0: एक्ट्रेसेस में नहीं है,
2: एक्ट्रेस हैं राधिका आप्टे है, दंगल वाली है, नाम मुझे याद नहीं है,
0: दंगल बहुत
2: सानिया, सानिया कुछ उसका नाम है, ये मुझे वो बहुत पसंद है, और एक और है याद नहीं आ रहा है उसका नाम, लेकिन है बहुत, मुझे मेथड एक्ट्रेस बहुत पसंद है, और मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बोलना चाहती हूँ वो नाम, उसके भी घुंघराले बाल है, हाँ, लेकिन बस एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस तक सीमित नहीं है,
0: मतलब जो भी घुंघराले बाल होते हैं उनके फेवरेट होते हैं
2: नहीं सब है,
0: सब है,
2: सब है, सब है,
0: जिनके बाल भी नहीं हो आपके भी फेवरेट,
2: अनुपम खेर जी है
1: बहुत धन्यवाद
0: हाँ जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद
2: लेकिन साथ ही साथ जब मैं साहित्य पढ़ रही थी, मेरे प्राध्यापकों ने पढ़ाया था, तब भी वो आ गया था, क्योंकि जब वे समझा रहे थे, इस प्रकार से समझा रहे थे कि आपको झकझोर कर ही मानेंगे ताकि परीक्षा में कम से कम वो याद आए, तब आप अच्छे से आप काम कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो मेरे प्राध्यापकों ने मुझे सिखाया है वो आज नाटक में काम आ रहा है। मेरी बहन जी भी थी कॉलेज में, उसने भी मुझे बहुत ही मतलब दिशा प्रदान की है, और यहाँ पर अगर मैं स्थानीय कलाकार का नाम लेना चाहूँगी तो वो है आदर्श भाई, क्योंकि ऐसा मैंने उनको ऐसे किसी के रोल में भी नहीं देखा जहाँ पर उन्होंने अच्छे से कुछ किया ही नहीं। जब मैं देख रही हूँ तो आप ये कैसे कर पा रहे हैं, उसका आधा अगर आप मुझे देंगे ना तो मतलब बढ़िया हो जाएगा मेरा। सो मैं जितना बोलना चाहूँगी वो बस इतना है कि मैं बस एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं उन सब व्यक्तियों को अपना आदर्श मानती हूँ जिन्होंने मुझे जोड़ा है, या फिर आपसे कुछ सीखा है। हर एक व्यक्ति से हम मिलते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो मेरे लिए नाटक में बहुत ही मतलब काम की चीज़ बन जाती है।
0: नाटक कहते समय, नाटक करते समय बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं, नाटक में नाटक के बहुत अनेक पहलू होते हैं,

0: नाटक में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है?
1: हर एक दृष्टिकोण को अपनाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर लोगों को बस अपनी ही पड़ी है। मेरा दुख दुख है, आपका दुख तो क्या ही है, मेरे दुख के सामने आपका दुख क्या है। जब आप नाटक करते हैं तो आप दूसरों के दुखों को या फिर दूसरों की खुशियों को अपना बनाकर उसको महसूस करके आप सामने लाते हैं। आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये बात हमें समझना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही सही है। आप जो, मतलब अगर आप घोड़े से पूछेंगे कि राक्षस कौन है तो वो बोलेगा कि शेर है क्योंकि मुझे तो खा गया, लेकिन वही चीज़ अगर आप घास से पूछेंगे तो राक्षस तो घोड़ा बना ना। सो ये नाटक की खासियत है कि जब आप कर रहे हैं तो आप जितना भी नकारात्मक पात्र हैं आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा पकड़ लेते हैं, या फिर जितना भी अच्छा है तो आप सोचते हैं, आपकी आलोचना में विकास आता है, आपकी सोच में परिवर्तन आता है, आपकी हृदय में परिवर्तन आता है और आप एक इंसान के रूप में ही बदल जाते हैं। मैं जो थी कुछ साल पहले, वो नाटक करने के बाद मैं वो मीनाक्षी नहीं हूँ। और ये भी मैं देख, जैसे कि पहले मुझे खुद लगता था कि मुझे ये लग रहा है कि ये ठीक है तो यही ठीक होगा, आप माने ना माने यही ठीक है, लेकिन नाटक के बाद मुझ में वो परिपक्वता आई है कि मैं ना, भगवान ने दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, सो उसका मैं प्रयोग करूं। दो कान दिए हैं कि ज़्यादा सुनो कम बोलो, ये ऐसा वाला है।
0: परिस्थिति को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि उसी परिस्थिति को आप दूसरों के नज़रिए से किस तरह से आप देखें।
1: और एक बात मैं जोड़ना भी चाहूँगी, ये ऐसा है कि हर एक इंसान को ये लगता है कि एक इंसान एक ज़िंदगी में कितना कुछ करेगा, लेकिन नाटक में आप इतना कुछ कर लेते हैं ना कि आखिरी के 7 मिनट, जब मैं चली जाऊंगी, आखिरी के 7 मिनट बोलते हैं आपकी ज़िंदगी आपके सामने आती है। सो मुझे अभी के लिए इतना लग रहा है कि मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में बहुतों के
2: भूमिकाएं
1: निभाई है। धन्यवाद।
0: बहुत ही सुंदर, मतलब दृष्टिकोण अलग हो सकती है और देखने के नजरे भी अलग हो सकते हैं। वही प्रश्न संजय जी आपसे हम पूछना चाहेंगे, शुरुआत इससे करेंगे कि आपके आदर्श भाई को छोड़कर आपके और बहुत सारे आदर्श रहे होंगे।
2: जब मीनाक्षी बात कर रही थी और इस युग के जेनजी युग के नौजवानों की बात कर रही थी, सुशांत सिंह की बात कर रही थी, अभी जो नए नए राजकुमार राव की बात कर रही थी, तो हम अपने जमाने के एक्टर्स के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ये जो मेरी प्रेरणा बने हैं, नसीरुद्दीन शाह,
0: अरे वाह,
2: परेश रावल, ओम पुरी, अमरीश पुरी, आज सभी लोग सलमान खान की बात करते हैं, शाहरुख की बात करते हैं, हमारे नजरिए में जो रियल एक्टर्स ये सब लोग हैं, परेश रावल जी, अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी एक बहुत ही बड़ी और आज अगर मैं रेडियो पर बोलता हूं तो मेरी शुरुआत हुई है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और अमिताभ जी के जरिए हम उनके पिताजी
0: हरिवंश बच्चन
2: के बारे में हम जाना, तो हमने तब हमको पता चला कि अमिताभ जी के पीछे जो रियल प्रेरणा है वो तो उनके पिताजी हैं। तो आज जब हम पीछे देख रहे हैं कि किन से हम प्रेरणा लेकर यहां तक पहुंचे हैं, तो ये जो सभी नाम हमने आपको सुनाए आते हैं। आपने सही कहा कि आदर्श भाई हैं, लेकिन आदर्श भाई को जानने से पहले इन सभी पात्रों को हमने
0: आदर्श के रूप में देखा। आदर्श के, इसलिए हमने कहा कि आदर्श को छोड़कर और कौन से आदर्श है आपके?
2: परेश रावल की वो भूमिका अपटे,
1: बाबूराव
2: अपटे, शान का कौन है, कुलभूषण करमंडा, तो ये सभी जो पात्र हमने फिल्मों में देखे हैं, रिवाइंड करके फिर से देखो, लोग फिल्म जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, फिल्म

0: देखते हैं और खुश होकर पॉपकॉर्न खाकर लौट आते हैं। हम वहीं पर बैठकर जैसे कि उस पर्दे पर, फिल्म समाप्त हो चुकी है, उस पर्दे पर अभी भी उन बातों को देख पा रहे हैं। और सोते समय रात को ये सभी के सभी जो पात्र हैं मन में आते हैं कि इसने ये डायलॉग इस तरह से कहा, इस तरह से उनकी भूमिका रही, इस तरह से उन्होंने देखा, इस तरह से नजदीक आकर उन्होंने डायलॉग कहा। ऐसे जब पूरी जिंदगी आपकी एक एक एक एक मंच के समान बन जाता है, लोग कहते हैं ना जिंदगी
1: प्यारे का
0: नहीं एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, पर्दा उठता है पर्दा गिरता है। तो ऐसे हमने सीखा।
1: तो नाटक के पहलू होते हैं, नाटक की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है?
0: लोगों के दिलों को छूना। हाँ, ये बात तो हम रेडियो पर भी करते हैं। जब कोई अच्छा सा गाना आप बजाते हैं और उससे पहले एक अच्छा सा डायलॉग बोलते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, भाई जी बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। जब मंच पर आप एक भूमिका निभाते हैं और लोगों की आंखों में देखते हैं ये प्रेज, लोगों की आंखों में या तालियों की गूंज आप सुनते हैं या तो आप लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं कि आपने लोगों को छुआ, ये बात है। और ऐसे छुआ, जो पहला नाटक मैंने भाग लिया था वो वर्कशॉप में, तो जानते हैं कौन, बहन जी आई थी, बहन जी
1: अंजलि जी
0: आई। अंजलि जी आकर ऊपर में कहा, संजय मुझे मन कर रहा था कि आप ऊपर में आकर आपको एक थप्पड़ मार। तो ये रिएक्शन देखकर मुझे संतुष्टि हुई,
1: एक तरफ से
0: तारीफ है। तो ऐसे ही तारीफ के काबिल इंदिरा जी हैं, जिन्होंने बुरी काकी का की भूमिका निभाई। मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात थी कि जिस तरह से दुर्व्यवहार मैंने उनके साथ किया, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं जोर आवाज से या तो ऐसे बुरे बर्ताव मैं दादी के साथ करूं। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, घसीट कर लाओ और बैठो यहां पर, चुपचाप बैठो। मुझे सर दर्द होता था, आज भी होता है, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड। तो दादी के साथ ऐसा करना, मेरा तो मन कर रहा था कि जब नाटक समाप्त हो गया हो तो मैंने जाकर उनके चरण छुए, दादी मुझे माफ कर, मुझे नाटक में भी ऐसा नहीं करना था।
1: आप लोगों को बता दें कि अगर संजय जी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, मीनाक्षी भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आपको नाटक जाके देखना ही होगा। बूढ़ी काकी इन नाटक प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी है और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इसका आयोजन हुआ था और भाकुआ रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इसका मंचन हुआ था। कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुँच रहे हैं, अभी समय हम देख रहे हैं। मीनाक्षी जी, नाटक में भाग लेने से पहले मीनाक्षी कैसी मीनाक्षी थी, नाटक में भाग लेने पर के बाद अभी आज की मीनाक्षी कैसी मीनाक्षी है?
2: मैं मुँहफट हूँ सच में, बहुत ही मुँहफट हूँ और कभी कभी हिस्टेरिकल भी, किसी ने बोला था एक बार लेकिन साथ ही साथ दुनिया के तौर तरीकों से मैं अनजान थी। कुछ तो हमें पता होता है क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी एक समाज के सदस्य हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ कभी नहीं हुआ है या फिर कुछ ऐसा। उसके पहले एक उतना, मतलब उतनी मैच्योरिटी नहीं थी जितना कि अब है। अभी ये ऐसा है कि जैसे कि मैं बोल रही थी पहले भी कि हम तभी एक चीज़ को सीरियसली मानने लगते हैं जब हमारे अपनों के साथ ये होता है। लेकिन ये बात नाटक करते करते ये मतलब जहन में घुस गया कि क्या इंसानियत बस आपके अपनों तक ही सीमित है। ये सवाल जब मन में आया तब आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव आता है, आप शांत बन जाते हैं थोड़ा सा, आप सोचने लगते हैं, मतलब ओवरथिंकिंग, फालतू की चीज़ों को की ओवरथिंकिंग को छोड़ के आप ऐसे विषय पकड़ लेते हैं जो सच में वर्थ इट है।

0: और इस कारण मेरी लेखनी में भी सुधार आया हुआ है। और साथ ही साथ अगेन जब आप चल रहे हैं तो आप नोटिस करना शुरू करते हैं, आप अपनी दुनिया में अपनी छोटी सी बबल से बाहर निकल के असली दुनिया को देखने लगती हैं, जो चल रहा है या फिर जो कुछ बेच रहा है। आप बस उस सामान को नहीं देखते हैं, आप उस व्यक्ति को भी देखते हैं। अगर कोई हंस रहा है या फिर एक एक एक आदमी भी होगा फूल लेके जा रहा है, आप उसको एक एक अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं कि चलो कोई तो खुश होगा आज, या फिर ऐसा सब कुछ एम्पैथी आप मुझ में डेवलप हुआ है।
1: बहुत ही सुंदर है संजय जी, वही प्रश्न आपसे, क्योंकि समय को सीमा को देखकर बहुत कम समय रह गया है, लेकिन संक्षिप्त में हम पूछना चाहेंगे आपसे। संजय तो रेडियो वाला था, टीवी वाला था, संजय फिल्म में काम किया है, नाटक में काम किया है, पहले के संजय फिल्म से पहले और आज का संजय नाटक के बाद कैसा रहा, कौन सा परिवर्तन हो?
2: जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, हम भी आपकी तरह उस घड़ी को देख रहे हैं कितना समय है। आज के इस आधुनिक युग में जहां पर सब कुछ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जैसे कि आप स्विच को ऑन करो तो ऑन हो जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, जो दिल पर निर्भर है, भावनाओं पर निर्भर है। और आज के जमाने में ये जरूरी है कि हम वी गो बैक टू बेसिक्स। मनुष्य टेक्नोलॉजी से अलग है, किस तरह से हम लोगों से संपर्क रख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, नाटक से हमें यह पता चलता है। और बुरी काकी नाटक को में भाग लेने के बाद ये और भी सुदृढ़ हो गया है कि हमें लोगों से मिलना है, उन लोगों की भावनाएं जाननी है, समझनी है। एंड लेट्स कनेक्ट विद पीपल।
1: बहुत ही सुंदर नाटक जो है, जब एक्टिंग करता है, नाटक में भाग लेता है, और भी भावुक हो जाता है, और भी जल की तरह, पानी की तरह बह जाता है इमोशन में। तो मीनाक्षी जी, संजय जी, आप आए इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपके अनुभव हमसे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने वाले नाटकों के लिए पहले से ही शुभकामनाएं। नमस्कार, आप
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जय सियाराम।
1: जय सियाराम। तो आप लोगों ने साथ दिया, कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोगों ने सीखा भी, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग नाटक में भाग लेते रहिएगा, नाटक लिखते रहिएगा, कहानी का नाट्य रूपांतर भी करते रहिएगा, और कहानी में भाग तो लेंगे, निर्देशन भी करिएगा, और हमारा कार्यक्रम भी सुनते रहिएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने आज एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देना है। इनमें डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस सहयोग को और तेज करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम बिजनेस फोरम स्थापित करने की भी योजना है। ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ें, यही संदेश इस सप्ताह नुवेल फ्रांस की सड़कों पर गूंजा। ताइक्वांडो जांग ने मॉरिशस ताइक्वांडो फेडरेशन के सहयोग से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें युवाओं, अभिभावकों और इलाके की कई संस्थाओं ने भाग लेकर नशे के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। इस पहल ने ये भी दिखाया कि ताइक्वांडो केवल आत्मरक्षा की कला नहीं है बल्कि

ये मानसिक शक्ति को भी मजबूत करता है और युवाओं को उनके आसपास मौजूद नशे जैसे खतरों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने के दौरान भक्त मंदिरों में शिव अभिषेक करते हैं और शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। श्रावण मास के दौरान वेदों की शिक्षाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। आर्य सभा की शाखाओं में यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है और वेदों पर प्रवचन किए जाते हैं। विदेशी खबरों में अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी हमले किए हैं। मंगलवार को अमेरिकी ताकतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले के जवाब में ये हमले किए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को दुनिया के लिए कैंसर बताया और कहा कि अमेरिका उन पर दबाव बनाए रखेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। पाल्मिस्ट रोड न्यूग्रोव में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड की श्रीमती धनवती रामदेनी पैदाइश नाम कालीचरण और जो नानी नीता से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज प्रभात के 3:30 बजे उनके घर पाल्मिस्ट रोड न्यूग्रोव से उठाकर रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: सभी को नमस्कार। और इस कार्यक्रम में यानी कि आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आज जुलाई महीने की 30 तारीख है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया गया। पर ध्यान देने वाली बात है कि इसे अलग अलग देशों में अलग तिथियों पर मनाया जाता है। खैर, विश्व मित्रता दिवस वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे, तो इसी विषय से संबंधित आज की चर्चा रखा गया है और बेशक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में दो सम्मानित अतिथि हैं। महात्मा गांधी संस्थान से डॉक्टर राज शेखर जी हैं, जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, प्रोफेसर भी बोल सकते हैं, आईसीसी और चेयर इन हिंदी हैं, लेखक भी हैं। बातों बातों में इनसे आप ज़्यादा मतलब परिचित हो जाएंगे इनसे। और हमारे साथ साथ हैं, जानी पहचानी वैसे, हमारे साथ संस्कृत के व्याख्याता हैं, जो लेक्चरर ऑफ संस्कृत महात्मा गांधी संस्थान से, श्री विश्वानंद पत्या जी। आप दोनों अतिथि का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत और नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और सबसे पहले डॉक्टर शेखर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व मित्रता दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या है?
1: जी, सर्वप्रथम हमारे श्रोतागण को मेरा कर बद्ध नमस्कार। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बात करते हैं तो यह शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर इसे परिभाषित करता है। आखिर क्यों इसकी ज़रूरत हुई कि हम पूरे विश्व भर में एक साथ एक ही दिन 30 जुलाई को मित्रता दिवस मनाएं? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न संस्कृतियों के बीच और विभिन्न लोगों के बीच मित्रता। और यदि भारतीय शब्द या मॉरिशस के शब्द को उसमें जोड़ दें तो भाईचारा
0: जी,
1: तो मित्रता और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 211 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्तर पर हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाएंगे।
2: जी,
1: तो जैसा कि मैंने कहा, इसका उद्देश्य है मित्रता और भाईचारा को बढ़ावा देना। जैसा कि श्रोतागण आप लोगों को पता है, ऐसे भी हम परंपरागत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं।
2: जी हाँ।
0: और वसुधैव कुटुंबकम, आप बताइए इसका मतलब क्या है? सभी तो

0: मतलब यह है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है,
1: बिल्कुल।
0: और जैसे ही हम परिवार की बात करते हैं उसमें वही भाईचारा है। आप जब फ्रेंडशिप का अनुवाद आप करते हैं तो हम बोलते हैं मित्रता, ठीक है, लेकिन जो हमारा भाईचारा है वह मित्रता से बहुत बड़ा है।
1: और यहाँ तो

0: ये मित्रता बोलते हैं, दोस्ती भी बोलते हैं
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: सब आता है इसमें
1: जी,
0: इसके पर या जी, बोल सकते हैं।
1: उसके अलावा आप देखेंगे कि कई लोगों में एक भ्रम की स्थिति होती है कि हम प्रत्येक अगस्त महीने के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाते हैं
2: जी।
1: तो ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आखिर क्यों हम 30 जुलाई को मनाते हैं? अभी भी देखेंगे जैसे भारत है, बांग्लादेश है, मलेशिया है,
0: विभिन्न दूसरे तिथि पर मनाते हैं ये 30 जुलाई को नहीं, लेकिन पहली या शायद सगन अगस्त
1: पहले रविवार पहले रविवार
2: को हम पहले रविवार को मनाते हैं,
1: पहले रविवार को मनाते हैं
2: जी।
1: अब देखिए कि पूरा विश्व है, विश्व में जो है सैकड़ों देश हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं, और उनके बीच हमें मित्रता और भाईचारा स्थापित करना है, यानी हम कई स्तरों पर बात करते हैं
2: जी।
1: पहला क्या है, राजनयिक स्तर, जिसमें हमारे नेता दूसरे देश के नेता से बात करते हैं और एक मित्रता स्थापित करते हैं
2: जी।
1: उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं हम एक आर्थिक संबंध बनाते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं और सांस्कृतिक संबंध बनाते हैं, यह भी मित्रता का एक व्यापक रूप है। मित्रता का रूप केवल जो है एक लड़का लड़की के बीच नहीं है,
0: ये हम सिर्फ मित्रों के बीच, स्कूल के बीच में सब यही
2: कहने का यह तात्पर्य है कि लोगों, देशों या संस्कृतियों के बीच जो दोस्ती का बंधन हम रखते हैं उसी को एक प्रकार से हम
0: अच्छा विश्वानंद जी सब एक सच्चे मित्र जो हम बोलते हैं, एक सच्चे मित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है?
2: तो एक सच्चे
0: आपके अनुसार
2: जी, एक सच्चे मित्र की विशेषता या उसका गुण यह हो सकता है। देखिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड। मतलब कठिनाई के समय में कभी भी जब कभी कोई आवश्यकता पड़ जाए उस समय जो दोस्त आपके सामने आ जाए, सामने खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा दोस्त है। उदाहरण के रूप में देखिए, कर्ण के पास कोई सांबल्य नहीं था, लेकिन जब दुर्योधन उसके सामने आ गया तब उसको शक्ति प्राप्त हुई, उसको हौसला प्राप्त हुआ, उसको उत्साह प्राप्त हुआ, और ये दोनों घनिष्ठ मित्र के उदाहरण बन गए। उसी प्रकार कृष्ण और सुदामा ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो कहने का यह तात्पर्य है जब कभी भी विकट परिस्थिति आ जाए तभी सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो ऐसी स्थिति में उस पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं, कितना विश्वास कर सकते हैं, यह बहुत आवश्यक है एक सच्चे मित्र को पहचानने के लिए।
0: सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किया, धन्यवाद।
2: और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ श्रोताओं के लिए, देखिए संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर उक्ति है, कहा गया है मिनाति स्नेहेन हृदयम इति मित्रम। यह मित्र की परिभाषा है, मित्र का अर्थ है। कहने का यह तात्पर्य है कि हृदय को स्नेहपूर्वक प्यार से जो बांध ले वही मित्र कहलाता है।
1: बिल्कुल, और गुरु विश्वा की ही बात को जो है मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा और यह बताना चाहूँगा कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय में भी मित्रता के बारे में जो बातें की गई हैं, जैसे कि बाइबिल में कहा गया है कि मित्रता से बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे, यानी यह त्याग और उपासना। मित्र बाइबल में क्या कहा गया कि दोस्ती जो है यह त्याग और उपासना की चीज है, यानी आप केवल उसमें लेना नहीं चाहते बल्कि त्याग करना चाहते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में भी कि एक अच्छे और बुरे मित्र की संगति कस्तूरी बेचने वाले और लोहार की भट्टी समान है, यानी अच्छी संगति से जो हमेशा खुशबू पैदा होती है, इसीलिए अपने आसपास अच्छे मित्रों को रखना चाहिए,
0: अच्छी संगत जो बोलते हैं।
2: इसका सटीक उदाहरण मॉरिशस है। मॉरिशस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब
1: और देखेंगे कि बौद्ध संप्रदाय में भी और जैन संप्रदाय में भी गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक आध्यात्मिक और सदाचारी मित्र होना आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा नहीं बल्कि पूरा हिस्सा है, यानी मित्रता को अध्यात्म तक ले जाते हैं। और फिर सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब का जो बहुत ही अच्छा संदेश है कि हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें परमात्मा के करीब लाए, यानी
2: अवश्य
1: जो महान आत्मा है उससे हमारा मिलन कराए,
2: जो आत्मोत्थान के लिए हमें प्रेरित करे,
1: बिल्कुल, और हमारे भीतर मानवीय गुणों का विकास करे,
2: विकास करे।
1: यानी जिस दोस्ती और मित्रता से प्रेम और मानवता को बढ़ावा नहीं मिलता है

0: वैसी दोस्ती का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। यहूदी धर्म में भी एक बहुत ही अच्छी कहावत है, या तो मित्रता चुनो या मृत्यु। दो ही विकल्प है
1: जी,
0: यानी या तो आप मर जाइए, यानी आपके दोस्त नहीं है तो आप मृत समान है, या फिर आपको एक अच्छी मित्रता चुननी चाहिए।
1: उसे जी यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए संस्कृत में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, तो एक श्लोक है जहाँ पर मित्र के लक्षण के साथ साथ मित्र के बारे में भी बहुत अच्छा बोला गया है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अंतिम देखिए, अमित्रस्य कुतः सुखम, मतलब यदि आपके मित्र न हो, आपके अच्छे दोस्त न हो, तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जीवन में सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है,
0: बिल्कुल
1: हर एक क्षण।
2: और वैसे हम लोग सब जानते हैं मित्रता जो है एक ऐसा रिश्ता है जो विश्वास, सम्मान, सहयोग और अपनापन की मजबूत नींव पर टिका होता है।
1: जी हाँ,
2: तो चलिए एक गाना हम अभी चलाते हैं, फिर इस प्रोग्राम इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: मित्रता दिवस। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची दोस्ती केवल खुशियों में नहीं बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाने का नाम है। इस पर थोड़ा घड़ी हम लोगों ने चर्चा की। हमारे साथ श्री विश्वानंद भट्टिया जी हैं और डॉक्टर राजशेखर जी हैं। इन लोगों के वार्तालाप से ये जान गया कि हम लोगों को कठिन बस दोस्ती सिर्फ कठिन समय ही में नहीं देखते हैं लेकिन दोस्ती हमेशा मतलब कह सकते हैं कि यूँ ही नहीं करते हैं, एक दोस्त नहीं बनाते हैं, मित्र नहीं बनाते हैं। तो इस पर ज़्यादा खुलासा हम लोग जानेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो डॉक्टर जी हमें ये बताएं कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की दोस्ती और वास्तविक की दोस्ती जो है इसमें कोई अंतर है या क्या, इस पर आपका क्या विचार है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो अंतर है वो आसमान ज़मीन का अंतर है। अभी भी जब मैं सोशल मीडिया दोस्ती के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि क्या वास्तव में सोशल मीडिया दोस्ती हमारे जीवन में एक सार्थक भूमिका अदा करती है या नहीं करती है? आप भी सोचेंगे तो आपको बहुत चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे जी। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया मित्र होते हैं जो हमारे आसपास हैं, घर के आसपास हैं, और वे हमें वहाँ लाइक कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, और जब आमने सामने उनसे जब मुलाकात होती है या दिखते हैं तो नमस्ते भी नहीं करते, हाय हेलो भी नहीं,
2: अनदेखा कर देते
1: हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है
2: जी
1: कि सोशल मीडिया की दोस्ती हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है या नहीं है। कहीं ना कहीं हमने और हम सभी ने, उसे मैं भी हूँ, एक छोटे से 6.5 इंच के स्क्रीन में अपने आप को कैद कर लिया है,
2: कैद कर लिया पूरा।
1: तो जहाँ कैद वाली स्थिति है
2: जी,
1: वहाँ दोस्ती कैसे हो सकती है
0: जी।
1: पहली बात आप देखेंगे कि जैसे कोई फेसबुक अकाउंट है, उसमें आप 5,000 दोस्त बना सकते हैं
2: जी,
1: और जब आपको ज़रूरत पड़ती है

0: आप कभी मुसीबत में होते हैं तो क्या वे 5,000 दोस्त आपकी सहायता करेंगे? आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें से अधिकांश क्या लगभग ना के बराबर, यदि 5,000 देखें, दो ही तीन जो आपके परिवार के हों या बहुत आपके घनिष्ठ हैं जो वहां पर हैं, वही आपका हाल समाचार पूछेंगे।
1: या ये जी, एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया में जितने भी आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, अधिकतर इसमें स्वार्थी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक मतलब होता है सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, और कुछ ढूंढते हैं आपसे। देखिए, मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ।
2: एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी, जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आज हम साल 2026 में
1: हैं। जी जी जी,
2: तो ये तो आधुनिकता की बात आती है इसमें।
1: ये तो सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ अपना। हम हमारे ज़माने में वो नोकिया था मोबाइल, ठीक है, ये इतना एडवांस नहीं था। तो जब हम सभी मित्र मिलते थे तो हम कहाँ घूमने जाते थे? खेतों में, जो मेल होता था पत्थरों के ढेर, उसके ऊपर वहाँ पर जाकर बैठकर हम लोग गपशप करते थे, बातें करते थे। नदियों के पास जाते थे, नदियों के पास, और वहाँ पर खेलते थे, तैरते थे, ये सब। लेकिन आजकल ये सब कहाँ हो रहा है? आजकल सभी लोग सिर्फ इसी पर फोकस्ड हैं, इसी मोबाइल पर, और रात देर रात तक मोबाइल पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। इससे क्या होता है? कान, आँख, ये सब खराब होने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन आपने सही कहा, हम लोग एक एडवांस युग में जी रहे हैं, बहुत ही प्रगतिशील युग है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे आमने सामने होता है उसका अलग प्रभाव होता है। मान लीजिए हम दो ही अभी बात करें, हम तीन बात कर रहे हैं, तो एक अलग है, आँखों का कॉन्टैक्ट हो रहा है, आवाज़ आदान प्रदान हो रहा है इसके माध्यम से, हमारे शब्दों का, तो ये सब आवश्यक है। अब सिर्फ फ़ोन पर ऐसे बात करेंगे तो ये ठीक नहीं होता है, ये मेरा मानना है।
0: जी बिल्कुल, इसमें मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा कि नकारात्मक बातें तो हैं
1: जी,
0: जैसे सोशल मीडिया पर आपके दोस्त हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं
1: जी, हाँ ये भी, हाँ।
0: और एक दूसरे के लिए बुरे बुरे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, इसको ट्रोल करना कहते हैं।
1: अब देखिए, वो साइबर क्राइम भी आ गया है
0: जी,
1: ठीक है, अगर आप गलत किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो साइबर क्राइम उसमें आ जाएगा।
0: हाँ जी,
1: ये भी अच्छा नहीं।
0: तो एक तरह से ये सारी चीजें हैं, लेकिन यदि सकारात्मक पहलू को देखें तो ये जो सोशल मीडिया की जो मित्रता है, कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का उद्देश्य है
1: जी, हाँ,
0: उसको परिपूर्ण करता है। यानी आप पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति से आप दोस्ती कर सकते हैं, अपनी बात को साझा कर सकते हैं, उनकी समस्या और जो उनकी अच्छाइयां हैं उन दोनों से परिचित हो सकते हैं। तो यह एक सकारात्मक पहलू भी
1: जो
0: है।
1: सही कार्य हो रहा है वह है विश्वव्यापीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए कहा गया है ना, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो बात आपने कही थी पहले, ये सब इसी श्लोक में समाहित
0: जी। और मुझे लगता है कि जब बहुत सारी नई नई तकनीक हमारे जीवन में जब आते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत समस्या होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखेंगे कि इसका भी एक सकारात्मक पहलू उभर कर सामने आएगा
1: एकदम।
0: और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोग अच्छे दोस्त भी बनते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
2: और
0: कई बार कई जगह हम घूमने जाते हैं, दूसरे विदेशों में जाते हैं, तो वो हमसे जुड़ते हैं।
1: देख लीजिए, यदि हम एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं
0: जी
1: स्वास्थ्य के कारण, तो हम ऑनलाइन ही अपने मोबाइल पर उस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो ये अच्छा है हमारे लिए, हम नहीं जा पाए प्लेन के द्वारा, तो मोबाइल के बाद उसके
2: मतलब
1: माध्यम से हम
2: प्रयोग करें,
1: उसका सुप्रयोग करना चाहिए, ये आवश्यक है।
0: और आजकल देखेंगे कि एक और ट्रेंड भी चल रहा है, यदि हम सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐप,
1: बहुत सारे,
0: तो कई बार जो है हम लड़ाई भी करते हैं, लड़ाई करने के बाद हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, ये सब भी जो है ना अपने गुस्से को मतलब दिखाने का तरीका है। लेकिन जो परिपक्व लोग हैं, है ना, जो मित्रता का सही उद्देश्य है,
1: जानते हैं,
0: यदि वो जानते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक अनब्लॉक या इस तरह के सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाएं और एक परिपक्वता दिखाएं, क्योंकि मित्रता का जो पहला आधार यही है कि आप कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं। यदि आप मैच्योर नहीं हैं तो मित्रता के सही अर्थ को आप नहीं समझ
1: सकते। और आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करना चाहिए, जैसे मैंने बोला इसका सुप्रयोग करना चाहिए।
2: अच्छा,
1: और समय का पालन भी।
2: विश्वानंद जी, आप लेक्चरर भी हैं महात्मा गांधी संस्थान।

0: में और आप डॉक्टर प्रोफेसर हैं और लेखक भी हैं आप, तो विद्यार्थी जीवन मतलब विद्यार्थियों के साथ छात्रों के साथ आप खुल मिल जाते हैं, मतलब रोज कह सकते हैं प्रतिदिन, तो विद्यार्थी के विद्यार्थियों के जीवन में अच्छी मित्रता का क्या महत्व है डॉक्टर जी?
1: बहुत ज्यादा महत्व है उसको, केवल मित्रता और संगति दोनों से जोड़िए
2: जी,
1: ठीक है। हम अपने बच्चों को जो है हमेशा दो भाग में विभाजित करते हैं, एक जो बहुत तेज बच्चे हैं और एक मध्यम प्रकार के हैं तथा स्लो लर्नर हैं
2: जी।
1: तो हम हमेशा इन बातों पर ध्यान देते हैं कि जो तेज बच्चे हैं उनको हम कहते हैं कि आपके जो थोड़े से कमजोर हैं आप उनसे थोड़ी दोस्ती करिए,
2: थोड़ी दोस्ती कीजिए,
1: है ना
2: जी। हाँ।
1: और जो
2: उनकी
1: मदद कीजिए, और जो थोड़े कमजोर है उनको ही प्रेरित करते हैं, आप कमजोर बच्चों के साथ नहीं बल्कि एक किसी तेज बच्चे को पकड़ लीजिए तो दोनों तेज हो जाएंगे। यही मित्रता का जो है उद्देश्य है। जैसा कि गुरु विश्वा ने भी अभी बताया कि कृष्ण और सुदामा
2: जी,
1: कृष्ण और सुदामा, सुदामा जो थे गरीब थे, चना जो है चुरा कर भी खा लिए, है ना, नहीं कहा, क्योंकि वो गरीबी से, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, गरीबी से उभरा उभरी हुई उनकी मानसिकता थी कि उन्होंने कृष्ण से छुपकर चना खा लिया
2: और पेट की भूख भी मिटानी,
1: लेकिन कृष्ण की परिपक्वता देखिए, धनी होते हुए भी उनके हृदय में द्वेष नहीं है सुदामा के प्रति, और जब उनको महसूस होता है कि सुदामा को मेरी जरूरत है तो वे अपने संसाधन से उनको बहुत कुछ देते हैं
2: जी।
1: तो गुरु विश्वा आपको भी पता होगा कि जो भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, मील बांट कर प्रयोग करना चाहिए, उसको मील बांट कर जो है उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके पास संसाधन है तो आप किसी से नहीं बांटते, और दूसरे के पास संसाधन है और आपके पास नहीं तो आप सोचते हैं कि उससे हम जो है मील बांटकर उसको ले।
2: देखिए अनुराधा जी, आपने अभी अभी विद्यार्थियों के बारे में चर्चा की, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं मान लीजिए एक मॉड्यूल पढ़ाने जा रहा हूं तो सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं,
1: बिल्कुल,
2: और उसमें सारे विद्यार्थी आ जाते हैं और मैं भी रहता हूँ, तो हम लोग वहाँ पर मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए आपको ये काम करना है, इस समय हम लोग कक्षा शुरू करेंगे, ये सब डिटेल थोड़ा हम दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ कि जैसे आपने अभी अभी कहा प्रोफेसर जी कि कोई छात्र कमज़ोर हैं या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो तेज़ छात्र हैं कृपया उनकी मदद करें,
0: बिल्कुल,
2: ये अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा,
1: बिल्कुल,
2: मदद करनी चाहिए, और दोस्ती का मतलब यही है, मदद करना,
1: बिल्कुल,
2: सहायता करना, ठीक है, ये आवश्यक है।
1: और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 छात्र हैं, तो आपस में मेल जोल के साथ जोल रहें, ऐसा ना हो कि वहां पर आप गुटबाजी कर रहे हो, एक गुट बना लिया है,
2: एकता में बल। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो मैं अभी सुनाना चाहूंगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत से कबूतर ऐसे आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे और एक घने वन की ओर से गुजर रहे थे, एकाएक उन्होंने देखा कि वन में कहीं पर बहुत सारे
1: अनाज
2: बिखरे हुए हैं, चावल के दाने से बिखरे हुए, तो उनके मुंह में पानी आ गया
0: जी।
2: उन्होंने कहा अरे चलो नीचे, दाने तो खाना तो यही है, भोजन यही है, चलो खाते हैं। लेकिन उसमें एक वृद्ध कबूतर जो था उसने कहा नहीं अभी मत उतरो, देखो अच्छी तरह से, ये घना जंगल है,
1: निर्जन वन,
2: यहाँ पर चावल के दाने कैसे आ सकते हैं, जरूर किसी की साजिश है, जरूर षड्यंत्र है ये। और उनको पता चल गया कि पास ही में कोई चिड़ीमार होगा और उसने आकर यहाँ पर जाल बिछाया है जानबूझकर और हम इसमें फंसेंगे, लेकिन किसी ने
0: कुछ
2: बात नहीं सुनी और वे उतर गए, तब उतर कर खाने लगे और कुछ ही समय बाद जाल में फंस गए। तब सभी लोग, सभी कबूतर बोल रहे हैं उसमें, अरे हमें हमारे वृद्ध कबूतर की बात माननी चाहिए थी, लेकिन देर हो गई, अब क्या करें। तब उस समय वृद्ध कबूतर ने कहा देखो एकता में बल है, इसीलिए अब हम साथ में उड़ेंगे, जाल को साथ में लेकर चलेंगे कहीं पर, और उन्होंने कोशिश की, जाल को लेकर साथ में उड़ते हुए चले गए और जाकर एक दूसरी जगह पर बैठ गए, नीचे चले गए। अब उन्होंने कहा अब क्या, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ मेरा एक मित्र
1: रहता है।
2: मित्र कौन है, मूषक, चूहा। चूहा आकर तब वो जाल को तरता है और वो
1: आजाद हो जाते हैं।
2: तो ये है
0: एकता में अनेकता।
2: हाँ, एकता में बल और साथ ही साथ जो अच्छा मित्र है उससे हमने सहायता प्राप्त कर

0: और बच गई
1: जी, मित्र,
0: जान बची।
1: मित्र कोई भी हो सकता
0: कोई
1: है,
0: कोई भी हो सकता है,
1: है
0: कोई भी,
1: कोई भी हो सकता है, जैसे आपने
2: कोई उदाहरण भी सकता है, लेकिन आदर्श मित्र भी जी, जुड़ना चाहिए।
0: किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए,
2: नहीं चाहिए। जी।
0: चूहा है लेकिन प्राण बचा लिए उसने सभी लोगों के
1: जी। सभी उसी तरह आप देखें कि रामायण में जो आपके सुग्रीव है
0: जी,
1: है ना, वे राम के मित्र हैं।
0: मित्र हैं।
1: सुग्रीव कौन है? वानर है।
0: वानर
1: है ना, यानी हाँ, यानी मित्रता केवल मनुष्य के बीच का मामला नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति से भी अपने आप को मित्रता करनी चाहिए। जैसे पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, वे सभी भी हमारे मित्र हैं।
0: जातियों से परे होकर, धर्म से परे होकर, जैसे श्री राम जी हैं, उनका मित्र कौन था? केवट।
1: केवट
2: जी।
0: और किससे मिले, किसका बेर उन्होंने काया?
1: सबरी।
0: ठीक है, तो इसमें बड़ी जाति, छोटी जाति, ये सब हम भूल कर हमें मित्रता करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जाति
1: बिल्कुल।
0: से ऊपर उठना चाहिए, यही ये बहुत आवश्यक है।
2: कहा जाते हैं कि सच्ची मित्रता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: बिल्कुल, तो, और विभीषण जो है राक्षसीय प्रवृत्ति के हैं, फिर भी जो है राम
0: से
1: उनको अपनाया, दोस्ती की।
2: विश्वानंद जी, क्या मित्रों का हमारे व्यक्तित्व और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है?
0: बहुत प्रभाव पड़ता है।
2: किस तरह?
0: मेरा एक मित्र है अभी भी, तो उनके मार्गदर्शन से जो मैं आज यहाँ पर हूँ वही हूँ। पता है, मैं मेरे जो रिजल्ट्स थे पहले थोड़े कमज़ोर थे, क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा खेलकूद पर था, लेकिन मेरे मित्र ने मेरा मार्गदर्शन किया। उसने देखा मेरा रिजल्ट ऐसा आया है, अगर तुम इस कॉलेज में जाओगे तो तुम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा, सलाह दी कि तुम इस कॉलेज में जाओ। और जब मैं उस कॉलेज में गया, नाम मैं नहीं लूंगा अभी, वहां पर वृद्धि होती गई।
2: अच्छा।
0: मैं आगे बढ़ता गया। यदि मैं वहां नहीं जाता तो मैं जहां पर अभी हूं नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि वहां पर वातावरण कुछ और था, वहां पर सभी लोग पढ़ते थे, सभी विद्यार्थी पढ़ते थे, और प्रोत्साहन मिलता था। तो ये है अच्छा मित्र।
2: तो डॉक्टर जी, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जिसने मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में आपका मतलब साथ दिया है, सहायता की साथ दिया?
1: जी, हमेशा से जो है, चूंकि मैं रेसिडेंशियल हॉस्टल में रहा हूँ और लगभग 20 साल मैं छात्रावास का जीवन व्यतीत किया हूँ, जहाँ की माँ पिताजी परिवार कोई नहीं थे, और मैं अपने मित्र जो सहपाठी थे उनके साथ तो रहा ही, बल्कि जो हमसे सीनियर थे बच्चे या जो जूनियर थे, वे भी हमारे मित्र थे।
0: जी हाँ।
1: और एक दूसरे के सहयोग से ही जो है हमने अपने व्यक्तित्व का विकास किया है। इसीलिए अपनी जो आपने कहा कि मित्रता आपके जीवन में क्या महत्व जो है रखती है, तो यह सबसे बड़ा है कि मैंने अपने 20 साल अपने मित्रों के साथ गुजारे हैं।
0: जी।
1: उनके साथ खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ सीखा।
2: आप ही के परिवार बन गई
1: वे, और मेरे परिवार बन गए वो सभी परिवार थे। उनके साथ जो है हम पूरा हॉस्टल साफ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं,
2: सब कुछ।
1: बीमार हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं, वे हमारा ध्यान रखते हैं। यानी हम लोगों ने सीखा कि परिवार से बाहर रहकर भी जो है हम अपने मित्रों के साथ
2: बहुत बड़ी उदाहरण है।
0: यह बहुत आवश्यक है
2: जी।
0: एक दोस्ती हमें सिखा सकता है कि विनम्रता क्या होती है।
1: जी,
0: ह्यूमिलिटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखेंगे कि बहुत सारे जो संत कवि वगैरह हैं, उन्होंने भी मित्रता को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बात की है। जैसे कबीरदास कहते हैं, कपटी मित्र न कीजिए, पेट पैठी बुद्धि लेत, आगे राह दिखाए के पीछे धक्का देत। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे कपटी और धोखेबाज जो व्यक्ति होते हैं, जिसे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यानी मित्रता करने के लिए आपको बहुत ही परिपक्व होना चाहिए
0: और सावधानी से चयन करना चाहिए।
1: क्योंकि संगति का बहुत बुरा असर होता है। ऐसा भी हो सकता है या तो आप संत बन जाए या हैवान बन जाए। तो कबीरदास ने भी ये बात कही। तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो एक चार धर्म बताते हैं
0: जी
1: मित्रता के। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी,
0: जी
1: निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना।
0: जी,
1: कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता,

0: उसे देखने से भी पाप लगता है। यानी हम यदि किसी के दुख को देखकर हम दुखी नहीं हो रहे
1: होंगे, सहृदय नहीं,
0: उसे पाप होता है। अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के कण के समान छोटा और मित्र के धूल के कण जितने छोटे दुख को समेरु पर्वत के समान बड़ा समझना ही सच्चे मित्र का कर्तव्य है।
1: तो उसी के अनुरूप जैसे अभी अभी प्रोफेसर जी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, संस्कृत में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है हितोपदेश, और उसमें मित्र के लक्षण के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है।
2: लाभ ही लाभ,
1: तो लाभ ही लाभ। तो श्रोताओं, यदि आप मित्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हितोपदेश ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। चार भागों में विभक्त हैं। पहला है मित्र लाभ, तब है सुहृद भेद, विग्रह संधि, और कहानियों के माध्यम से समझाया गया है उसमें।
2: और एक और प्रश्न है, ये युवा पीढ़ी को अच्छे मित्र चुनते समय
1: जी
2: किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए
0: जो उनके व्यक्तित्व का विकास करें
1: जी,
0: उनके उनको सही मार्ग पर ले जाए, ऐसे ही मित्रों का जो है हमें चयन करना चाहिए। मित्रता का सबसे बड़ा आधार है मानसिक संतुष्टि, ठीक है, यानी उसको हम जोड़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य से
1: जी।
0: यदि किसी से हम मित्रता करते हैं और मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं रहते तो अब मित्रता हमारे लिए जरूरी नहीं है।
1: देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक श्लोक के माध्यम से दूंगा।
2: बिल्कुल,
1: बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वह।
2: अर्थात
1: बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय व्यसनों में, अति निद्रा और कलह में बीतता है। तो जो आपके अमित्र होते हैं, जो गलत संगति में आपको ले जाए, ठीक है, तो वे दूसरी लाइन की दूसरी लाइन में आ जाते हैं, मतलब आपको व्यसनों की ओर अग्रसित कराते हैं। आपको कहेंगे अरे खूब खाओ पियो सो और अपना समय गंवाओ, ये कहेंगे, और झगड़ों में आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का यह तात्पर्य है, यदि आप सही मित्र का चयन करेंगे तो आप पहली पंक्ति को ध्यान में रखिए, वहां पर कहा गया है अध्ययन कीजिए काव्य शास्त्रों का और बुद्धिमान बनिए। तो अच्छे मित्र आपको बुद्धिमान बनाएंगे और कुमित्र आपको मूर्ख बनाएंगे।
2: चलिए एक श्रोता की राय देखते हैं क्या बोलते हैं। हेलो,
3: शुभ नमस्कार अनुराधा जी।
2: नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी,
3: और आपके मेहमान को भी सादर नमस्ते।
1: नमस्कार जी।
3: देखिए, मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें हो रही है, इसलिए मैं कुछ साझा करना चाहूंगा।
1: जी हाँ, अवश्य।
3: देखिए, ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है
1: जी,
3: मित्र की आवश्यकता है, लेकिन इस संसार में सच्चे मित्र थोड़े ही है,
1: दुर्लभ है,
3: दुर्लभ है
1: जी।
3: जंतुओं को मित्र बनाने से पहले खूब परख लेना चाहिए।
1: अवश्य।
3: और मैं कहूंगा, जिसे सच्चा मित्र मिल गया उसे मानव संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गया।
1: एक वरदान प्राप्त हो गया।
2: बहुत सुंदर विचार आपने कहा, बहुत बहुत सुंदर,
1: एकदम सही।
3: सच्चा मित्र इस धोखे छल प्रपंच आदि से भरे संसार में सदा हमारा पथ प्रदर्शक होता है। आप लोगों ने कहा भी मार्गदर्शन के
1: जी, जी, जी, जी। प्रोत्साहित करते हैं।
3: संसार में अनेक मित्रों ने अपने मित्रों को पतन की गर्त में गिराने से बचाया है
1: जी।
3: और आप लोगों ने उदाहरण दिया था इतिहास के, तो मैं भी कुछ यहाँ पे कुछ बांटना चाहूंगा। देखिए, इतिहास में अनेक सच्चे मित्रों के उदाहरण मिलते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता कौन नहीं जानता। मित्रता में तो छोटे बड़े का प्रश्न नहीं उठता। यहाँ पर उदाहरण है, निषाद राज को राम ने बिना छोटे बड़े का भेद किए अपनी छाती से लगाया।
2: जी हाँ,
3: सच्ची मित्रता तो विपत्ति आने पर ही पहचानी जाती है
1: जी।
3: और कहूंगा, आप लोगों ने इसका भी वर्णन किया था, सुदामा तो एक जने उदाहरण कर द्वारिका अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाता है, वो और वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण संपूर्ण राज काज को छोड़कर अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए

0: मजबूर होकर दौड़ पड़ते हैं, ये सबको पता है, और उसे छाती से लगाकर उसके पैरों को अपने आंसुओं से पकारने लगते, धोते हैं, फिर उसे दीन दशा को देकर बिना मांगे ही कुछ सब कुछ देते हैं। यह है मित्रता और सच्चे मित्र की पहचान।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपने मुझे मौका दिया अनुराधा जी,
2: आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: फिर मिलेंगे,
1: फिर मिलेंगे जरूर। जी हाँ, अब क्या आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मित्रता जो है वो समाज में शांति, सद्भाव और आपसी समझ बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है?
2: जी हाँ अवश्य। देखिए, जब देशों के बीच मित्रता होती है तो शांति की संभावना होती है,
1: बिल्कुल,
2: और यदि देशों के बीच दुश्मनी हो तब झगड़ा ही होगा, ये तो स्वाभाविक है।
1: स्वाभाविक है।
3: जब मैंने पहले ही आपको बताया कि विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न संस्कृतियों के बीच और विभिन्न लोगों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बात की गई है। यदि हम विभिन्न देशों के बीच हम जब देखते हैं, जैसे COVID-19 जैसी महामारी में कैसे भारत जैसा देश कई देशों की सहायता करता है,
2: सहयोग करता है,
3: तो हम जैसे बात करते हैं कि भारत और मॉरिशस क्या है, एक परिवार है, यानी हम दोनों एक मित्र के समान है, है ना, और हम दोनों एक दूसरे के विपत्ति के समय या खुशी के समय एक साथ खड़े रहते हैं। ये जो है मित्रता का व्यापक परिभाषा है
2: जी।
3: ठीक है, मित्रता को हम केवल दो व्यक्तियों के बीच केवल जोड़ कर नहीं देख सकते, उसको एक व्यापक आधार, व्यापक धरातल पर ही हमें उसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। दूसरी बात कि मित्रता जो है एक परिवार के अंदर भी है, जैसे पति पत्नी भी मित्र होते हैं, भाई बहन भी मित्र होते हैं, ये जीवन भर के मित्र हैं
2: जी।
3: यहाँ तक कि जब गुरु विश्वा ने कहा सुभाषितानी की बात की, उसमें भी कहा गया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी 14 साल से बड़े होते हैं
2: मित्र के समान,
3: तो उन्हें मित्र के समान हो जाते हैं, और उनको जो है मित्र के समान ही हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ना कि हमें उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग करें
1: जी।
2: और एक सटीक उदाहरण है, देखिए श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, वे शांति दूत बनकर गए थे, मित्रता का प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास, लेकिन वह नहीं माना।
3: बिल्कुल,
2: तो यदि मान जाता तो युद्ध नहीं होता,
1: नहीं होता।
2: और सभी लोग जीवित रहते, सभी लोग खुशी खुशी जीते,
3: तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं ना दुर्योधन से, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, ले वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं होता। यानी जो दूत होते हैं वो शांति दूत होते हैं,
1: शांति दूत
3: है ना
2: एकदम।
3: तो मित्रता एक, जैसे कि पहले भी हमने बात की कि वसुधैव कुटुम्बकम में हम विश्वास करते हैं, पूरा वर्ल्ड ही फैमिली है,
2: सब एक परिवार, एक परिवार।
3: हाँ, इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। केवल हम यह सोच लें कि मित्रता जो है केवल मनुष्य के बीच की बात है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। मित्रता जो है हमें अपनी धरती माता से करनी है, प्रकृति से करनी है, जलवायु से करनी है, सभी से मित्रता हमें करनी है। जो आसपास के जो जीव जंतु हैं, सोचिए कि यदि आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं, आपको प्रकृति में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई ना दे, है ना, हवा की आवाज ना आए, है ना, तो ये सब खत्म हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा। यानी हमें प्रकृति के बारे में भी सोचना है। हम पेड़ से भी दोस्ती करते हैं
2: जी हाँ।
3: जब हम पेड़ लगाते हैं, उनको पानी डालते हैं, रोज डालते हैं, उन कई लोग उनको सींचते हैं, गले मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये सब भी एक माध्यम है। यानी मित्रता में केवल सखी भाव नहीं होता बल्कि सेवा भाव भी होता है
2: जी।
3: जैसे महात्मा गांधी जी अपना देश छोड़कर दक्षिण अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका में जो है उन्होंने सबको ही अपना मित्र माना
2: जी,
3: है ना
2: हाँ।
3: यानी यदि आप व्यापक धरातल पर आप जब देखते हैं तो सभी हमारे मित्र
2: सभी
3: हैं,
2: हमारे मित्र
3: है ना। ठीक है, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यदि हम केवल नकारात्मक रूप से सोचें कि नहीं, अच्छे मित्र नहीं मिल सकते और ये नहीं हो सकता, फिर समाज का कल्याण कैसे होगा, है ना। दो ही मित्र अच्छे होंगे, दो ही मित्र का मतलब क्या है कि आप मित्र के साथ पार्टी करना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, या बीच पे जाके उनके साथ मस्ती करना चाहते हैं, ये मित्रता का आधार नहीं है।
1: और एक आम बात है जब कभी कभी बोलते हैं कि इस हमारे ये मित्र ने मुझे धोखा दिया
2: जी,
1: कैसे इसका कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो दोस्त है वो हमारे लिए सही है या गलत है?

0: परखना आना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: देखिए
1: किस तरह हम परखे।
0: हाँ, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, जो अच्छा मित्र होता है उससे हम अपने सीक्रेट्स, रहस्य साझा करते हैं, उसको बोलते हैं। जो बात हम अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन से नहीं बोल पाते, वो अपने मित्र से हम बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें उन पर भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए हम बोल पाते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी भी कहा कि कभी कभी विश्वासघात भी हो जाता है, तो इसीलिए कठिन परिस्थिति में ऐसे, हाँ कठिन परिस्थिति में ही हम उनको परख सकते हैं कि उनका स्वभाव क्या है, तब जान सकते हैं कि ये मित्र हैं या अमित्र। तो उनके सामने कुछ कठिन परिस्थिति लाइए, तब परख सकते,
1: तब परख सकते हैं।
2: मित्रता की जो परिभाषा है उसमें है त्याग और उपासना।
1: जी,
2: ठीक है। मित्रता आप ऐसे मत सोचिए कि किसी के पास गए तुम बहुत अच्छे मित्र हो या बेस्ट फ्रेंड्स, नो, है ना। त्याग कितना है, हम क्या करते हैं जब किसी के पास जाते थे, हम उम्मीद करते हैं। कई बार हम सोचते हैं वह हमारे लिए खर्च करे, है ना, हमारा पूरा ध्यान रखे, और जब हमारे पास पैसे हो तो हम उनके लिए कुछ ना करें। कहते हैं ना कबीरदास भी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। यानी जब मुझे दुख है तो सब लोग मेरी सहायता करो, मुझे ये करो, और जब तुम मैं सुख में हूं तो कोई मत आओ, है ना। दूसरी चीज क्या है कि ताली जो है दो हाथ से बजती है। केवल आप ये मत सोचिए कि हम केवल किसी पर आरोप लगाते हैं कि तुमने धोखा दिया, ऐसा नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं दोनों की गलती है। यानी मित्रता की जो सबसे बड़ी जो शर्त है वह यह है कि परिपक्वता, मैच्योरिटी।
0: और एक बात इसमें यह है, अब देखिए मान लीजिए दो घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों अपने क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उसमें यदि एक ऊंचे पद पर है और एक थोड़ा नीचे है, यदि उनके स्वभाव में, जो ऊंचे पद में है उनके स्वभाव में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो अच्छा मित्र नहीं होगा। वो सोचेगा अरे मैं तो अब बॉस हो गया हूँ, मैं ये तो अभी छोटा ही रह गया। अच्छे मित्र हैं लेकिन तब उस पर क्या करेगा, दबाव डालेगा, ऐसी वैसी बातें बोलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं। जो मित्र होते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक समान होते हैं।
2: जी, आपने यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मेरा भी अनुभव रहा है कि विद्यार्थी जीवन में हम साथ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, यदि कोई बहुत ऊंचे पद पर चला जाता है तो घमंडी हो जाता है कई बार, और फिर वो मित्रता
0: हो जाता है,
2: तो फिर वो मित्रता कुछ ढंग से नहीं लेता,
0: मित्र को वो परिभाषित नहीं कर पाता,
2: नहीं कर पाता सही ढंग से, और कहीं ना कहीं।
1: अच्छा, हमारे पास उतना समय नहीं, बस अंत में विश्व मित्रता दिवस पर आपका क्या संदेश है विश्वनाथ जी?
0: मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने मित्रों को परखिए, अच्छे मित्र बनाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, मित्र जब आपके होंगे तभी आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो अच्छे मित्र बनाइए, परखिए और उनसे वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए, इसी में सुख है।
2: जी, मित्रता को सही ढंग से समझना चाहिए और उसके व्यापक आधार को अपनाना चाहिए। मित्रता को केवल दो व्यक्ति के बीच के संबंध के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दो देशों के बीच, कई संस्कृतियों के बीच, और तब लोग आते हैं उसमें। हम मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ भी जो है हमें मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यदि हम प्रकृति और अपनी संस्कृति को यदि हम बचा लेते हैं तो फिर हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत सालों, करोड़ों सालों तक जो है जीवित रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि मित्रता के सही अर्थ को समझें और उसके व्यापक आधार को अपने जीवन में अपनाएं, त्याग और उपासना के रूप में ही मित्रता को देखें, और कभी यह उम्मीद ना करें कि वह हमारे लिए यह करेगा और हमें कुछ नहीं करना है। जिस दिन हम परिपक्व होंगे हमारी दोस्ती भी परिपक्व होगी और हम सही अर्थों में मित्रता के बात को समझ पाएंगे।
0: जीवन छोटा है, इसीलिए एक ही अच्छा मित्र मिल जाए तो यह जीवन यात्रा सुखद रूप से कट जाएगी।
1: जो श्रोताओं, महात्मा गांधी संस्थान से डॉक्टर राजशेखर, जो हिंदी साहित्य के विद्वान, ICC और चेयर इन हिंदी है, लेखक भी है, साथ में संस्कृत के व्याख्याता श्री विश्वानंद पत्या जी, जो महात्मा गांधी संस्थान से जुड़े हुए, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने मित्रता के महत्व और उसके मूल्यों पर अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, तो हमें पूर्ण आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रोग्राम से हमारे श्रोताओं ज़रूर ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो फैजन, उरूसा और जैनिश के सहयोग के लिए

पूर्ण आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रोग्राम से हमारे श्रोताओं ज़रूर ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो फैजन, उरुसा और जेनिश के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: टमाटर बरामद किए गए। इनमें हेरोइन, गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिस्टल मेथ और कोकीन शामिल हैं। पॉप्लेमोसिस के सचिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और फ्लाक के अनिरुद्ध जगन्नाथ हॉस्पिटल के बाद अब विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी बुजुर्ग मरीजों के लिए विशेष अक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स शुरू किया गया है। इन विशेष वार्डों का उद्घाटन आज कई महानुभावों की उपस्थिति में किया गया। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को आधुनिक और विशेष उपकरणों की सहायता से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन वार्डों में बुजुर्ग मरीजों को मल्टीडिसिप्लिनरी चिकित्सा देखभाल भी प्रदान की जाएगी। और विदेश में अर्जेंटीना के पश्चिमी प्रांत में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये हेलीकॉप्टर जंगल की आग बुझाने के अभियान में शामिल था। अभी तक हेलीकॉप्टर हादसे का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Continuous music.

दिल से मेरे दिल कार्यक्रम में सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं 94.96 98.2 FM पर. ये है और एम फ्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी का म्यूजिकल चैनल. माइक पे मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह और अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक रोमांटिक गीतों की पेशकश. रोमांटिक गीतों का सौगात लेकर हम आए हैं दिल से मेरे दिल. और जब दिल से दिल मिल जाते हैं, नजरें से नजरें मिल जाती है, तो प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है. और प्यार तो होना ही था, और इस प्यार को हो जाने दीजिए. सभी में सभी की भलाई इसी में है कि सभी को किसी न किसी से प्यार तो होना ही चाहिए, वरना जिंदगी वीरान है. प्यार के बिना, मोहब्बत के बिना, सो आप भी किसी को ढूंढिए और उनसे प्यार कीजिए, प्यार की बातें कीजिए, प्यार को हो जाने दीजिए.

प्यार तो सभी करते हैं परंतु प्यार क्या होता है ये कम ही लोग जानते हैं। जो लोग प्यार करते हैं उन्हें पता होता है कि प्यार एक एहसास है, प्यार जो एक फीलिंग है, एक इमोशन है, और प्यार अगर दोनों और बराबर हो तभी प्यार सफल होता है। और ये प्यार जो है कभी हमें रुलाता है, कभी हंसा देता है, कभी हमें कंफ्यूज कर देता है, ऐसा होता है प्यार। और प्यार के बारे में लोगों के अलग अलग विचार है। कुछ तो कहते हैं कि प्यार धोखा है, प्यार बेवफाई है, तम तो कहते हैं कि प्यार सच्चाई है, प्यार इबादत है, प्यार पूजा है।

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.

0: போட்டு யூ ஆர் லிசனிங் யுவர் ஆர் எம் த்ரீ மனோரஞ்சன் ரேடியோ ரஞ்சன் ரேடியோ
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
2: इश्क बिना न जीना, इश्क बिना न मरना, इश्क है तो सब कुछ है, इश्क नहीं तो हम भी नहीं। कुछ लोग इश्क के बिना कैसे जी लेते हैं, ये तो उन्हें ही पता होगा। पर इश्क के बिना जिया नहीं जाता, इश्क में जीना, इश्क में मरना।

कुछ ऐसे प्यार करने वाले भी होते हैं जो कसमें खाते हैं जीने मरने के संग संग। जी हाँ, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो तुझसे पहले। और जब प्यार सच्चा होता है तो हर जन्म में प्यार करने वाले किसी न किसी बहाने किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। अगर आपका भी प्यार सच्चा है तो गीत आपके नाम और आपके प्यार के नाम।

0: शाम के 4:40 हो रहे हैं दिल से मिले दिल कार्यक्रम और इन प्री रेडियो मनोरंजन पर प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहती है पर प्यार में कसमी वादों को निभाना चाहिए तभी ये प्यार बुलंद होता है किसी ने किसी का दिल चुरा लिया किसी ने किसी की रातों की नींद चुरा ली है ऐसा ही होता है प्यार में है ना
1: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ जैसे नासिर हुसैन तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था

लेडीज एंड जेंटलमैन अभी आप आदित्य नारायण सुजान डेमेलो और चिरंतन भट्ट को सुन रहे हैं द मूवी शापित कभी ना कभी तो मिलोगे जहां कभी ना कभी कोई तो मिलेगी आपको या मिलेगा यस यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड फॉर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम जब भगवान ने आपको संसार में भेजा है देन देयर इज योर पेयर समवेयर इस देश में अगर ना सही तो दूसरे देश में तो वो होगा या होगी ही ऐसे तो मान के चलते हैं कोई भी अधूरा नहीं है यहाँ पर जब रब ने आपको भेजा है तो उसने आपकी जोड़ी को भी भेजा है यहाँ पर जब आपका जन्म हुआ था तो उसका जन्म भी उसी समय हुआ था क्या बात है यस दिल से मैं दिल कार्यक्रम फ्रेंड्स इट्स टाइम टू से गुड बाय शाम के 5 बजे आपकी मुलाकात होगी संजय से शाम को 4 बजे से अभी तक हमारा साथ देंगे शुक्रिया करो मेहरबानी हमारी आपकी मुलाकात होगी अब सैटरडे 1 अगस्त को जी हाँ सुबह के 6 से 9 बजे के बीच रेडियो मोशन पर और शाम के 5 से 6 बजे का रेडियो मनोरंजन पर टिल देन गुड बाय फ्रॉम मी आप लोगों ने प्यार से सुना प्यार मोहब्बत की बातें आपने हमसे सुनी क्या बात है यूँ ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहिए प्यार करते रहिए इट्स टाइम टू फॉल इन लव Yes, love is in the air. और जय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार आदाब love you all God bless namaste

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: इस समय मुशुस में ठीक शाम के 5 बज रहे हैं।
2: राम रसधारा, रसधारा
1: ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः रामरस धारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री गणेश वंदना के साथ।

कोर्मलंगम सीता समारोपितवाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये।

श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी के नाम उच्चारण में कितनी शांति मिलती है, दिल को राहत पहुंचती है। इस रोज के तनाव से छुटकारा चंद लम्हों के लिए मिलता है।

ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पठे नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं राम वल्लभाम्। श्री रामचंद्राय नमः। राम वल्लभाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।

0: राम रसधारा रसधारा
1: चाहे कहिए राम राम राम राम राम। हमें यकीन है कि शर्मा बंधु भाइयों की वाणी में इस भजन को सुनकर बहुत से हमारे जो श्रोता भाई बहन हैं उनके मन में बहुत सुनहरी यादें उमर आई होंगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम राम रसधारा भाई संजय के साथ। ये प्रोग्राम चलता है हर गुरुवार को कुछ दिनों के लिए 5 से लेकर 5:50 तक, अगले मास गुरुवार को 5:30 से लेकर 5:50 तक। श्री राम जी की स्तुति के पश्चात चलें मिलकर सुनते हैं श्री हनुमान जी की स्तुति। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजं वानरयुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम अर्थात हनुमान जी वो हैं जो मन की गति से भी तेज उड़ते हैं। मारुततुल्य वेगम जो वायु की तरह वेगवान हैं, जो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, जिसके रास्ते पर कोई बाधा नहीं हो सकता क्योंकि वायु के लिए कोई फ्रंटियर्स नहीं होते हैं। जितेंद्रियम जिन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली है, यानी अपने इंद्रियों के दास स्लेव नहीं है हनुमान जी। बुद्धिमतम वरिष्ठम फोरमोस्ट अमंग द वाइज वातात्मजम वायुदेव के पुत्र वानरों की के सेनापति श्री रामदूतम, ये हनुमान जी का सबसे प्यारा परिचय है, वो रामदूत हैं। शरणम प्रपद्ये, ऐसे श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।

0: राम रसधारा रसधारा
1: देवी और सज्जनों, कल हम सबों ने बड़े ही उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाया और आज से शुरू हुआ श्रावण मास। श्रावण मास में शिव जी की भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है, रुद्र अभिषेक किया जाता है और साथ ही साथ इस पूरे श्रावण मास के अंतर्गत रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरितमानस में प्रमुख वक्ता शिव जी होते हैं और प्रमुख श्रोता माता पार्वती। रामचरितमानस की कथा को शिव जी ने अपने मन में संजोए रखा और उचित मौका मिलने पर ही उन्होंने ये कथा माता पार्वती जी को सुनाई। शिव जी की जटा से एक गंगा बहती है, भगीरथी पतित पावनी माँ गंगा, और शिव जी के हृदय से बहती है एक दूसरी धारा, राम रस धारा, जिसको पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम दिया राम चरित्र मानस।

0: रसधारा।
1: रामचरितमानस के लंका कांड में लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम जी शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिवलिंग की स्थापना करते समय ये स्तुति गाते हैं। भगवान शिव जी की आराधना में देवी और सज्जनों रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम वीना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। अर्थात जिस भक्त के हृदय में श्रद्धा स्वरूपिणी भवानी मां न हो और विश्वास स्वरूपा शिव जी न हो तो उस व्यक्ति के सामने अगर भगवान भी आ जाए तो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। जब लंकापति रावण अपने महल में सो रहे थे और उनके सामने हनुमान जी प्रकट हो गए माता सीता की खोज में तो वे अपने प्रभु शिव जी को पहचान नहीं पाए और सोते रह गए। क्या कह सकते हैं इसको।

जब हृदय में श्री राम और हनुमान जी हैं तो काहे को डरे। देवी और सज्जनों, इसी के साथ ही आज का हमारा राम रसधारा ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में। अंत में श्री हनुमान जी की आरती और उसके पश्चात शांति पाठ। शांति पाठ के बाद आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर किरण जानकी जी की प्रस्तुति में, और उसके बाद भोजपुरी गान। भोजपुरी गाना के बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। हमें आज्ञा दीजिए संजय भाई की ओर से। जय सिया राम, जय जय हनुमान।

हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने उ साइट पर नजर दौड़ाव जा, उ धरोहर पर जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अभी अभी शामिल कर रहा बा, हमने बात करब जा बौद्ध स्थल सरनाथ पर। उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सरनाथ के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर देवल गल। ई भारत के 45वां विश्व धरोहर स्थल अब बन गल बा। ई घोषणा दक्षिण कोरिया के बुसन में भयल 48वां विश्व धरोहर समिति के बैठक में करा गल बा। ई भारत के सांस्कृतिक और आधुनिक विरासत खातिर बहुत बड़ा उपलब्धि बा। वाराणसी में बसल सरनाथ के ई कारण पूजल जाला, कहे कि गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान पावे के बाद यहाँ पहला उपदेश दिले रलन। यही जगह से धर्म चक्र परिवर्तन शुरू होल। यहाँ धमक स्तूप, अशोक स्तंभ, कितने पुराना मठ और सरनाथ पुरातत्व संग्रहालय जैसन महान स्मारक पावल जाला। दुनिया भर से तीर्थयात्री और दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन खातिर आवेलन जा। धमक स्तूप उ जगह है जहाँ बुद्ध अपन पहला 5 शिष्य के 4 आर्य सत्य के ज्ञान दिले रलन। स्तूप 43 ऊंचा बा और 2500 बरिस से भी पुराना है। अशोक स्तंभ और सिंह मुद्रा, सम्राट अशोक यहाँ पर आ रलन और स्तंभ बनवेले रलन। उही स्तंभ के ऊपरे 4 सिंह होला चिन्हा बा। आज ई भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है और चक्र बीच में बा। अब सरनाथ म्यूजियम, यह दुनिया की सबसे सुंदर बौद्ध मूर्ति और अशोक स्तंभ के मूल टुकड़ा यहाँ रखा गल बा। यूनेस्को की सूची में आइला के बाद यहाँ पर और विकास और सुरक्षा के काम चाहेला। संक्षेप में, सरनाथ खाली पत्थर के ढेरी नहीं है जो पहला नजर में लौकेला, बल्कि ई ऊ जगह है जहाँ से शांति और करुणा के संदेश पूरा दुनिया में फैलल। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और उसके ईंधन आपूर्तिकर्ता ओक्यू ट्रेडिंग के बीच का अनुबंध इस शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है। इस अनुबंध के कारण मॉरिशस ने एक साल में लगभग 1 बिलियन रुपए की बचत की है। मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने आज एनहांस स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। आजसू की विभिन्न टीमों द्वारा चलाए गए एक अभियान में कल 24 घंटे से भी कम समय में देश के अलग अलग इलाकों से 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर मादक पदार्थों की तस्करी का संदेह है और उन्हें हिरासत में रखा गया है। तलाशी के दौरान करीब 55 मिलियन रुपए की लागत के मादक पदार्थ बरामद किए गए। आज से श्रावण मास शुरू हुआ। आज पहले दिन मंदिरों में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। आर्य समाज मंदिरों में यज्ञ हवन किए जाते हैं। और विदेश में अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी हमले किए हैं। मंगलवार को अमेरिकी ताकतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमलों के जवाब में ये हमले किए गए। और अब समाचार विस्तार से। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और उसके ईंधन आपूर्तिकर्ता ओक्यू ट्रेडिंग के बीच का अनुबंध इस शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण मॉरिशस ने एक साल में लगभग 1 बिलियन रुपए की बचत की है। मंत्री माइकल सिकियन के अनुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भारत के साथ होने वाले आगामी समझौते पर हस्ताक्षर होने तक लागू रहेगी। इस समझौते से मॉरिशस का पेट्रोलियम आयात बिल और कम होगा, जिसका लाभ देश की जनता को होगा।
2: स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और ओमान की कंपनी ओक्यू ट्रेडिंग के बीच गत वर्ष मॉरिशस को पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति के लिए तय किया गया कॉन्ट्रैक्ट 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 1 अगस्त 2025 से एक वर्ष के लिए तय इस समझौते को असाधारण रूप से 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। यह अतिरिक्त समय मॉरिशस और भारत के बीच प्रस्तावित नए पेट्रोलियम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है।

0: et de la population qui nous fait étendre ça contre là. Et un an de cela, va tenir la guerre. Et ils ont dit tout prix qui peut gagner, ben prix la guerre. C'est-à-dire war price. Ça veut dire deux, pendant deux mois encore, nous pour soulager. Les bons aussi qui vont dire où, le premium price qui nous fait signer avec OQ Trading, quand nous comparons avec l'ancien contrat, c'est-à-dire de l'ancien gouvernement, il coûte nous 1 milliard de roupies en moins selon un an.
1: इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ सरकार से सरकार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित समझौते के प्रमुख लाभों में से एक मॉरिशस के लिए भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूल भुगतान व्यवस्था है।
0: Entre temps, nous pouvons finaliser le contrat avec le gouvernement indien. Un point très positif qui est capable déjà de dire où nous pouvons payer en roupie, c'est-à-dire un produit pétrolier qui nous poste avec Indian Oil à travers le gouvernement indien. Donc, nous pouvons payer en roupies. Donc, ça, c'est déjà un gros avantage.
1: भारत के साथ नए समझौते के अंतिम रूप लेने तक अधिकारियों का कहना है कि ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए हर आवश्यक प्रयास जारी रहेगा।
0: En janvier, nous pouvons payer un produit pétrolier sur tous les sens autour de 600 dollars métrique tonne. Là, il finit répondre, il tourne autour de 1000 dollars métrique tonne. Au niveau de Maurice, le prix de l'essence finit augmenter une seule fois. La Mopédiaou, 10 avant la guerre, il est 50% plus cher que janvier, nous augmenter une seule fois à la hauteur de 10%. Nous pouvons faire tout pour Tinili, pour absorber le choc, parce que du moment où nous montons le prix de l'essence et diesel, il fait l'effet domino sur les produits alimentaires et aussi sur les produits non alimentaires.
1: अब सभी की निगाहें भारत के साथ होने वाले इस समझौते पर टिकी हैं। इसके क्रियान्वयन से जुड़े अंतिम विवरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस के पेट्रोलियम आयात पर होने वाले खर्च को कम करना, साथ ही देश के ईंधन आपूर्ति को और अधिक सुरक्षित बनाना है।
2: अभी आप करुणा लालू को सुन रहे थे। आजसू की विभिन्न टीमों द्वारा चलाए गए एक समन्वित अभियान में कल 24 घंटे से भी कम समय में देश के अलग अलग इलाकों से 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर मादक पदार्थों की तस्करी का संदेह है और उन्हें हिरासत में रखा गया है। तलाशी के दौरान करीब 55 मिलियन रुपए की लागत के मादक पदार्थ बरामद किए गए। इनमें हेरोइन, गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिस्टल मेथ और कोकीन शामिल हैं। ज्यादा जानकारियां अशिता रघु के साथ।
3: 24 घंटे से भी कम समय में एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट आजसू की विभिन्न टीमों ने लगभग 55 मिलियन रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। ये संयुक्त अभियान फ्लाके रेजिडेंस एडीसी ओलिविया, बिजडोम्बो, कॉन्लेव्यू और ट्रेफल रोजिल इलाके में एक साथ चलाए गए। इन कार्रवाइयों को आजसू की फ्लाक, मेट्रो नॉर्थ और वेस्टर्न डिविजन की टीमों ने अंजाम दिया। आजसू के इन सभी छापों के जरिए सीधे ड्रग तस्करी के नेटवर्क को निशाना बना रही है, क्योंकि इन जब्तियों में मात्रा और मूल्य जरूरी है। हम ड्रग तस्करों को पकड़ रहे हैं। कल सुबह 7:45 पर रेजिडेंस ओडिसे ओलिविया में की गई छापेमारी के दौरान दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। 60 वर्षीय विल्सी व शार्लोट के पास से 2.3 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं दो घर छोड़कर रहने वाली 22 वर्षीय मारी आजा के घर से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 95 लाख रुपए बताई गई है। आजसू की मेट्रो नॉर्थ डिवीजन ने 26 वर्षीय पैट्रिक ओमुगम को गिरफ्तार किया। उसके घर की तलाशी में 400 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स, 36 ग्राम कोकेन और 589 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार ये मादक पदार्थ बिक्री के लिए रखे गए थे। जब्त ड्रग्स की कुल कीमत लगभग 14 मिलियन रुपया आंकी गई है। इसी दौरान आजसू की वेस्टर्न डिवीजन ने रोजेल के कॉन्लेव्यू इलाके में भी तलाशी अभियान चलाया, जहां 26 वर्षीय रोनाल्डो गबाई को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से करीब 500 ग्राम कोकेन, 400 ग्राम से अधिक क्रिस्टल मेथ और लगभग 500 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। आजसू वेस्टर्न ने रोजेल के ट्रेफल इलाके में भी छापेमारी की, जहां लुई मैनुअल को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 515 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का संदेह है।
2: सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के निजी आवास में किए जा रहे कार्यों से

से जुड़ा एक वीडियो प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति दफ्तर ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, चाहे वे स्थित

0: निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने के दौरान भक्त मंदिरों में शिव अभिषेक करते हैं और शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। विधि मां सुपरांग को सुनते हैं।
1: श्रावण मास के दौरान मंदिर प्रार्थना करने, ध्यान लगाने और अर्पण करने के लिए आने वाले कई भक्तों का स्वागत करते हैं। भक्त शाकाहारी भोजन करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक के अनुष्ठान में भाग लेते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके दौरान जल, दूध और अन्य सामग्रियों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है।
2: आप जो भी करते हैं इस महीने में, जो भी मनोकामना है आप मांगेंगे, ये सफल हो सकती है।
3: हम लोग छोटे जब थे, माता पिताजी हम लोगों को सिखाया है ये श्रावण मास बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत लाभदायक है, तो हम यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ तक हो सके हम इस मास के लाभ उठाते हैं।
4: Ça envoie la, ça envoie prospérité, ça nous fait la prière, nous demander avec les cœurs propres, nous progresser. Ça envoie demande beaucoup sacrifice, beaucoup dévotion.
1: श्रावण मास के सोमवार का विशेष स्थान होता है। ये दिन प्रार्थना, आत्मनिरीक्षण और स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने को समर्पित होते हैं। आचार्य दर्शन शर्मा रामफल बताते हैं,
5: श्रावण का नाम ही है श्रवण करना, सुनना। यह मास में तजित होकर के सच्चे मन से अंतर्थम जा करके भगवान की लीला को, भगवान की कथा को, भगवान की जो अमुख्य मुख्य जो दृष्टिकोण है, भगवान का माने कि जो असली रूप है उसको, उस पर नमन करें। शिव पुराण में यही कथन कहा गया, जब नारद मुनि जा करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु मैं कहाँ जा करके आपके दर्शन करूँ, मैं कहाँ जा करके आपकी पूजा को करूँ। भगवान वहाँ पर बहुत सुंदर वचन कहते हैं कि हे नारद, ना हम वसामी वैकुंठे, ना हम वसामी योगी हृदय, यत्र भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मुझे याद करते हैं, मुझे ध्यान करते हैं, मैं वहीं पर वास करता हूँ। ऐसे महादेव की आराधना करना एक मास तक उनकी बहुत कृपा आशीर्वाद है।
1: लेकिन अनुष्ठानों से परे ये महीना भक्तों को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने, एक सादा खान पान अपनाने और करुणा, धैर्य तथा अनुशासन के मूल्यों के करीब आने के लिए भी प्रेरित करता है। कई परिवारों के लिए श्रावण मास आत्मनिरीक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक समय भी है।
0: श्रावण मास के दौरान वेदों की शिक्षाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। आर्य सभा की शाखाओं में यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है और वेदों पर प्रवचन किए जाते हैं।
1: आर्य समाज के अनुयायियों के लिए श्रावण मास वेदों और आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद की शिक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अवसर होता है, जो वैदिक ग्रंथों की ओर लौटने तथा सत्य, ज्ञान और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित करते हैं। इस अवधि के दौरान आर्य समाज की शाखाओं में वेदों के पठन और व्याख्या के सत्र आयोजित किए जाते हैं। भक्त प्रार्थनाएं भी करते हैं, विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जाप, जिसे प्रकाश, बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए एक आह्वान माना जाता है। आचार्य आशीष बताते हैं,
6: वेद डिवाइन नॉलेज को कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं। तो जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, उनका स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है श्रावण मास के अंदर। और पर्पस ये रहता है स्वाध्याय के माध्यम से नॉलेज को गेन करके हम विजडम फुल बने, और विजडम फुल बन करके हम अपने सेल्फ को एलिवेट करें, ग्रो करें, जिससे हम अंदर अपने अंदर एक कंट्रोल डेवलप कर पाए। नॉलेज का पर्पस ही यही होता है कि हम अपने अंदर एक कंट्रोल, एक बैलेंस डेवलप कर पाए, जिससे हम जो बैड टेंडेंसीज हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनके स्लेव ना बने, उनसे हम दूर हट करके हम अच्छी वैल्यूज़ को, अच्छी आदतों को, अच्छे नॉलेज को अंदर इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये जो श्रावण मास है, श्रावण मास के अंदर अधिक स्वाध्याय किया जाता है, अधिक

0: लर्निंग की जाती है, अधिक पढ़ा जाता है, अधिक सीखा जाता है।
1: सभाओं में यज्ञ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पवित्र अग्नि के चारों ओर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जबकि लपटों में आहुतियाँ अर्पित की जाती हैं। यह अनुष्ठान मन की शुद्धि, आपसी मेल मिलाप और अच्छे कर्म करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
2: मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने आज एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देना है। इनमें डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस सहयोग को और तेज करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम बिजनेस फोरम स्थापित करने की भी योजना है। करुणा लालू को सुनते हैं।
3: इस समझौता मॉरिशस और यूके के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। इसके तहत दोनों सरकारों के बीच ही नहीं बल्कि निजी सेक्टर और अन्य पक्षों के साथ भी नियमित बातचीत का प्रावधान होगा। चार प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, ब्लू और ग्रीन इकोनॉमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाएं। सरकार के हालिया बजट में ये प्राथमिकताएं शामिल हैं। मंत्री धनंजय रामफल ने कहा, हस्ताक्षर किए गए समझौते में दोनों देशों के बीच एक बिजनेस फोरम कायम किया जाएगा, जहां बरतानी निवेशक और निजी मॉरिशियन निवेशक भाग लेंगे और उन प्रोजेक्टों पर विचार करेंगे जो आपसी देशों के लिए फायदेमंद होंगे। यूके मॉरिशस का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बना रहता है। 2025 में यूके की ओर 130 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से अधिक का माल निर्यात किया गया। वहीं दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार लगभग 1.8 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 380 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दर्ज किया गया। ये मजबूत आर्थिक आधार इस नए एमओयू के साथ और मजबूत होगा। मॉरिशस में बरतानी उच्चायुक्त पॉल ब्रमल ने कहा, हम एक साझा इतिहास से साझा समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। यूके और मॉरिशस घनिष्ठ साझेदार हैं। पिछले वर्ष हमारी द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जो लगभग 15% की वृद्धि है। ये संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। एक सुदृढ़ रणनीतिक व्यापार साझेदारी स्थापित करके हमारा मकसद ऐसा तंत्र विकसित करना है, जिसके माध्यम से हमारे दोनों देशों के व्यवसाय और सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इससे व्यापार से जुड़े मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान किया जा सकेगा, हमारे संबंध और मजबूत होंगे तथा मॉरिशस के विजन 2050 के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग मिलेगा। इस साझेदारी को ठोस निवेश में बदलने के मकसद से मॉरिशस यूके बिजनेस फोरम की स्थापना की जाएगी, ताकि दोनों देशों के हित में सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
2: भारत में संसद ने कल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक रोकने से जुड़े कानून में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया। इस कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ये विधेयक सोमवार को पेश किया गया था। इसे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए गए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद संसद में लाया गया। करुणा लालू को सुनते हैं।
3: बुधवार को लोकसभा ने प्रश्न पत्र लीक रोकने संबंधी कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। संशोधित कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों की नारेबाजी भी जारी रही।
4: उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक

0: कर दी गई, फाइन 1 करोड़ से बढ़ाकर के 5 करोड़ तक कर दिया गया।
1: सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक उन बड़े छात्र आंदोलनों के कुछ दिनों बाद लाया गया जिनका नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था और जिनके कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की।
2: Public examinations, prevention of unfair means, amendment bill 2026 as passed by the Lok Sabha may be taken into consideration. The bill also testifies that this government does not stand on prestige. We never stand on prestige. We are open to healthy inputs. We are open to constructive suggestions from all quarters. And that is exactly the reason why, in the wake of the recent sequence of events, Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children.
1: उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक दर्शाता है कि सरकार अपने अनुभवों से सीखने के लिए तैयार है। आज राज्यसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया गया।
3: दुनिया भर में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने या सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक घटना है एल साल्वाडोर में, जहां कई अपराधों के लिए एक व्यक्ति को 1000 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
1: एल साल्वाडोर की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए गिरोह के सदस्यों को 1000 वर्ष से अधिक की व्यक्तिगत कारावास की सजा सुनाई है। लंबी सजाएं दक्षिणपंथी राष्ट्रपति नायिब बुकेले द्वारा 2022 में शुरू किए गए गिरोह विरोधी अभियान के तहत दी गई। इस अभियान के दौरान अब तक 90,000 से अधिक कथित गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कई को देश की कुख्यात उच्च सुरक्षा जेलों में रखा गया है। उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग उइगुर क्षेत्र के थियानशान पर्वतों में बर्फ से ढके कार्लिक हिमनद यानी कि ग्लेशियर के आसपास खिलने वाली दुर्लभ स्नो लोटस अब पूर्ण पुष्पन यानी फुल ब्लूम के दौर में पहुंच गए हैं। ये फूल 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर चट्टानों के बीच उगते हैं, जहां हवा अत्यंत पतली होती है और मौसम बेहद ठंडा रहता है। सूर्य की रोशनी में इनकी लगभग पारदर्शी पंखुड़ियां हल्की हवा के साथ धीरे धीरे लहराती हैं। ये फूल एक अनूठा और मनमोहक उच्च पर्वतीय परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। ग्रीस के केप सुनियन स्थित प्राचीन पोसिडन मंदिर के ऊपर रात के आकाश में शानदार बकमून ने अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा जब इस ऐतिहासिक स्मारक के पीछे से उदित हुआ तो फोटोग्राफरों ने इस मनमोहक पल को अपने कैमरे में कैद कर दिया। हर वर्ष दिखाई देने वाली इस खगोलीय घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्काई वॉचेस ग्रीस के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक पर पहुंचे। प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन इतिहास का ये अनोखा संगम सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया।
3: और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व से आने वाले बादलों का असर आज रात से मौसम पर पड़ने लगेगा। देश भर में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व और ऊंचे इलाकों पर आज रात और कल सुबह बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लघुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: फॉरेस्ट पार्क हेलनोट रोड इल्फोर्ड इंग्लैंड में 63 साल की 63 ईयर ओल्ड की श्रीमती रूपा मंगरू, जो गोबिन मंगरू की बेटी थी और जो पहले बालों सुरीनाम रहती थी, की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार शनिवार 1 अगस्त को मॉरिशन समयानुसार सुपहर बाद के 3:30 बजे किया जाएगा। क्रिमेशन इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे 1 अगस्त एट 3:30 PM। मेजुनेट रोड रिवियर डिज एंगी में 72 साल की 72 ईयर ओल्ड की श्री ठाकुर देव गोराया, जो गौसों साधु से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल उनकी पत्नी स्वस्ति रामदू के घर मेजुनेट रोड रिवियर डिज एंगी से उठाकर कांचाबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 3 PM। मधुलेन पिची वैश्य सैंपियर में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड के श्री कृष्ण कुमार बंसरोपन, जो क्रैश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर मधुलेन पिची वैश्य सैंपियर से उठाकर सेकोस्तांस सैंपियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। महात्मा गांधी रोड फोंजिसाक में 55 साल की 55 ईयर ओल्ड की श्रीमती विश्वानी रामखिलावन, पैदाइश नाम तिमल और जो विश्वानी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे अमित रामखिलावन के घर महात्मा गांधी रोड फोंजिसाक से उठाकर फोंजिसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। लापे जेरा बाक्स स्ट्रीट पीतो में 81 साल के 81 ईयर ओल्ड के श्री व्यास दत्त रामदोस, जो सुरेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी रमावती रामदोस के घर लापे जेरा बाक्स स्ट्रीट पीतों से उठाकर पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। रॉयल रोड मोसलमान सेंट एंड्रे में लोलो सुपर मार्केट के पास 82 साल के 82 ईयर ओल्ड के श्री चित बहाल राम सोहक, जो हरिदत्त से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले एजुकेशन ऑफिसर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी माया देवी राम सोहक के घर रॉयल रोड मोसलमान सेंट एंड्रे लोलो सुपर मार्केट के पास से उठाकर त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। मुसलमान VOS लालमाटी में 59 साल की 59 ईयर ओल्ड की श्रीमती पूर्णिमा बुलक, पैदाइश नाम नक्चेदी और जो माया से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके पति बुजिदेव बुलक के घर, जो नंदित बुलक से जाने जाते हैं, के घर मुसलमान VOS लालमाटी से उठाकर लावंचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 9:30 AM। एवेन्यू लाफोर्श रूद बासिन काथ्रोबोन में 90 साल की 90 ईयर ओल्ड की श्रीमती तयवंती सीतल, पैदाइश नाम नवरत्न और जो तयवंती सीतल से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे नीतीश सीतल के घर एवेन्यू लाफोर्श रूद बासिन काथ्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM। राजा रोड लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे में 84 साल के 84 ईयर ओल्ड के श्री धर्मानंद उगाथू, श्री धर्मानंद उगाथू जो धर्म से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे संजय उगाथू के घर राजा रोड लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से उठाकर लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: सेशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त शाम के ठीक 6:29 हो गई हैं।

जब कुल लड़ना हमारी जिंदगी की फितरत बन गई है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि ये लड़ने की जो फितरत है आप उसको अपनाते हैं या फिर ठुकराते हैं। नमस्कार और आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम, जहां इस वक्त शाम की 6:35 हो गई है और हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 तक। नई सोच कार्यक्रम रात के 7 और 7 से लेकर के 9 तक दिलों की आवाज़। लेकिन अभी के लिए एक नई सोच लेकर के हम आए हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारे गीत उन तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त काम से निकलकर घर की ओर जा रही है।

जी दोस्तों, इस वक्त शाम के 6:40 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। वेल दोस्तों, नई सोच कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर अभी के साथ। और आज हमारा जो मेन आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास के अंतर्गत बहुत सारे लोग यज्ञ कर रहे हैं। उसके पीछे उसका अपना एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है। लेकिन दोस्तों, आज श्रावण मास की जो कैसे मैं कहूँगा, उसका जो ओपनिंग पीरियड है, इसकी शुरुआत हो गई है। एक बात कहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर कि आप कितने भी एडुकेटेड हो सकते हैं, कितने भी ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान का वैल्यू तब होगा जब आप अपने अंदर में पाए जाने वाले जो सेंसेस हैं उसका पूरा नियंत्रण करें। अगर आप अपने सेंसेस को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो आप बैड टेंडेंसीज की ओर जाएंगे। सो नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप नियंत्रण करते हैं, किस तरह से आप अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन अपनाते हैं, किस तरह से आप अपने रूटीन में एक तरह के एक सीरियसनेस यानी कि एक गंभीरता को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।

जी दोस्तों, इस वक्त शाम की 6:54 मिनट हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। कल मैं एक शूटिंग करने गया था एक ऐसी लेडी के साथ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष कर रही है, बहुत लड़ रही है अपने दो बेटों के साथ, और वो अकेली है। लेकिन उसके अंदर में पाए जाने वाले जो स्ट्रगल का जो जज्बात है वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम लोगों को गलती से भांप लेते हैं या फिर गलती से उसको जज कर लेते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस लेडी को देखने के बाद मुझ में एक अनप्रेडिक्टेबल शक्ति मिली जो उसको शब्दों के साथ मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, लेकिन सामने वाले को जब हम देखते हैं कि उनके जो संघर्ष की जो डिग्री है हमारे संघर्ष से और ज़्यादा है, और हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने का एक अलग तरीके के मौका मिलता है और खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम इतने बुरे नहीं है, हमारी जो स्थिति है इतनी बुरी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बदतर हैं, और वे लोग अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। Let's have the जुनून inside, अपने अंदर में पाए जाने वाली जो जुनून है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप भी अपने प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल को डटकर सामना कर सकें।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर मिला लीजिए। इस वक्त रात के 7:01 हो गए हैं।

0: सो गाइस दिलों की आवाज कार्यक्रम बहुत ही सिंपल है. आपको फोन करना है 9400 पर 4020807 पर. कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे हम यहाँ पर चलाएंगे, या फिर एक सिंपल मैसेज भेज सकते हैं 9552506200.
1: आजा आजा

जी दोस्तों, इस वक्त रात के 7:20 हो गई है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब खासकर वे लोग काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं, या फिर यू नो दे जस्ट अलोन ड्राइविंग बैक होम, या फिर एक लोनली ड्राइव के दरमियान वे लोग एक अपना जो मी टाइम है वे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं जहाँ पर जो मी टाइम के दरमियान आपको लगता है कि हाँ, उसने गलत किया, उसने मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कैसे हो गया, यू नो। तो चलिए, ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

और इस वक्त हमारे साथ वेद विनोद हैं जो इस वक्त भोपाल से हमें याद कर रहे हैं by logging on freew.mbcradio.tv. उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है उनके हम सफर के नाम।

और अगर मैं कहूं कि मैं आपका साथ दूंगा यहां पर रात के 9 बजे तक और अगर आप फोन करेंगे 402 का तो वह श्वसन जिस पर तो कितना अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। अभी प्लीज़ मेरा नाम एक गाना चला दीजिए दिल तेरा दीवाना मूवी से। चलिए मैं कोशिश करूँगा। मेरे पूरे फैमिली जो इक्वायोर के रहने वाले हैं, दैट्स पेंटाया फैमिली एंड दैट्स फ्रॉम सेलू फ्रॉम इक्वायोर। मासूम चेहरा, चलिए बाप रे बाप, ये गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहे हैं और कभी कभी होता है कि अगर आप मुझे फ़ोन कर रही हैं और इंतज़ार करते करते करते आपके अंदर में एक फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, अरे यार अभी आपने कहा कि कत्सों जो का थोड़ा वैसा संजिस पर फ़ोन करने का, मैं फ़ोन करता जा रहा हूँ लेकिन आप उठा ही नहीं रहे हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मिलते हैं, मुझे अटेंड करना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे ढूंढना पड़ता है, मैं ही एक ये सब कर रहा हूँ। सो इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा सब्र करो मेरे दोस्त।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त विक्रांत हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। वो अब काम में पहुंच गए हैं। कभी कभी हम सोचते हैं काम से निकल करके घर की ओर जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो काम पहुंचते हैं, कॉफी लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं और हमारे शो को सुनना शुरू करते हैं। विक्रांत, खासकर ये गाना आपके नाम।

पता है, इसे गीत सुनने के बाद मूड भी रोमांटिकली सेट हो जाता है। आज बारिश भी हो रही है, बारिश की बूंदों के साथ अगर इस तरह के गाने हम चलाएंगे तो डेफिनेटली मूड रोमांटिकली सेट हो जाएगा। रात बाकी है और बात भी बाकी है मेरे दोस्त। 402-4070 पर 402-8070 पर फोन करने का आइडिया कैसा रहेगा? अच्छा, फोन नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके, एक मैसेज भेज दो। Send, drop us a message on 5250-6200। जहाँ दोस्तों इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम अभी के साथ, और अनीता जो फिगोन फ्लैग के रहने वाली है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है फ्रॉम उफ ये मोहब्बत। क्या बात है अनीता जी, उनके लवली पति हैं जिनका नाम है राज। वी ऑल्सो हैव अंतिश, अंकुश, मनीषा, अशीमा, हिमेश, आध्या और अंश और उनके सभी परिवार के सदस्यों के नाम। सो दोस्तों, अगर आप लोग ड्राइव कर रही हैं, ड्राइव सेफली क्योंकि बारिश हो रही है, कुछ जगह पर सड़कें जो हैं स्लिपरी भी हो सकती हैं, या फिर अगर जोरों की बारिश हो रही है तो विजिबिलिटी भी कम पड़ सकती है। सो बी केयरफुल ऑन रोड।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

और इस वक्त हमारे साथ जनाब इब्राहिम है फ्रॉम पोर्टवेस। उन्होंने कहा इस गाने की फरमाइश उन्होंने की और ये गाना जब चलेगा तब उसका जो दिल है वो बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगा। चलिए, छल पड़ा आपका गीत।

और इस वक्त हमारे साथ बाय जे के सुगन है जो पोएटो पिमो के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी माँ सोना और मौसी हैं सिवंती और सुगन फैमिली के लिए इस गाने की फरमाइश की है।

कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं लेकिन उसके बदले में हमें मोहब्बत ही नहीं मिलती है और हम कुछ भी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और आंखें भी नम पड़ जाती हैं, आंखों में भी आंसू छलकने लगता है, लेकिन किंतु परंतु ऐसे टाइम पर भी हम उससे बहुत प्यार करते हैं, रूह से लेकर के जिस्म तक, तुम तक।

और इस वक्त हमारे साथ उषा जो वाकवा से के रहने वाली हैं, उनके भाई रमेश सिवधारी का जन्मदिन है। यूके से हमें याद करें बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। शुभकामना का गुलदस्ता बहन है दे रही है मेधा शोभा और कामिनी। वी ऑल्सो हैव भाई मनोहर नीतीश शैलेश साहिल और जितने सारी सिवधारी फैमिली हैं, भाई रमेश को हम कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे।

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

रीटा किसुंडियाल रुजबेल से हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा उनकी दो बेटों के नाम व्योम और अखिल और साथ ही साथ उनके पति जिनका नाम है अजय किसुंडियाल और उनके सभी किसुंडियाल फैमिली के नाम, उनके मम्मा हैं संगीता, उनके लवली सिस्टर हैं पूनम, ये गाना खासकर उन लोगों के नाम।

नाइस सॉन्ग सिलेक्शन अभी, थैंक यू सो मच. प्लीज मेरे लिए गाना हो जाए. दिस इज मेघा मिश्रा और साथ ही साथ हैं सूर्या प्रकाशवती फ्रॉम बेल्जियम, हमेशा हमें हमारे साथ जुड़े रहती है. और ये जो गाना है खासकर हम अनीता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो फिकॉन्फ्लक के रहने वाली है. वी ऑल्सो हैव मोहतरमा, जी हाँ उनका नाम क्या है,

अच्छा रिहाना, उन्होंने कहा जलीला और जियाद के लिए ये गाना हो जाए जो फेनिक्स से हमें याद कर रही है। दोस्तों इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और नेक्स्ट थर्सडे को हम फिर से वापस आएंगे। तब तक हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे। ज्योति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम शातो बिनागेस, उन्होंने कहा सभी मैडम फैमिली के लिए अगला गीत हो जाए। अगर मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया है सो इसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन ये गाना खासकर आप लोगों के नाम। टिल देन अभी की ओर से नमस्कार और आदाब, टेक केयर, बाय बाय।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day, all night.
3: NBC TV programs की झलकियाँ।
4: तो फिर भगवान को भी एक इंटरनेट समझ, एक डिवाइन इंटरनेट, जो इस विश्व के हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पेड़ पौधा, हर अणु को कनेक्ट करता है। अगर इंटरनेट साइबर स्पेस में है तो द डिवाइन इंटरनेट स्वप्न आकाश में, स्वप्न आकाश अ प्लेस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस।
3: शनिवार 1 अगस्त को एमबीसी 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म रुद्राक्ष 2004 की ये मूवी संजय दत्त और विपाशा बासु पर फिल्माई गई रुद्राक्ष। एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
5: बहन डर गई क्या खा रहा है? इतना सा भी दूसरों को नहीं दोगे क्या?
6: अरे पहले मैं तो खाऊं, बहुत कड़क है ये।
7: अबे पागल है, ये बॉम्ब है।
8: भगवान हमारी मदद करने हर रूप में आता रहता है और इस बार बॉम्ब के रूप में आया।
6: शंकर भगवान है ये, जय बम भोले शंकर।
9: अरे रंगीन आदमी लगते हो यार।
6: तेरा मामा यहाँ लंदन में।
3: रविवार 2 अगस्त को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म भागम भाग 2006 की कॉमेडी और सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर मूवी अक्षय कुमार और गोविंदा पर फिल्माई गई भागम भाग।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात बीफे की रात था, 30 जुलाई।

2026 ई महीना के लगभग अंतिम दिन का अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम बिफे और रात के 9:10 होलबा हम किरण आप सब कोई के स्वागत करत है। आप सब कोई के बहुत बहुत प्यार के साथ, बहुत बहुत आदर भाव के साथ नमस्ते। ई उम्मीद करत है कि आज के दिन और आज के सांझ आपके बहुत अच्छा से बीतल और ई जो रात्रि शुरू होवा था

और ई में हमेशा की तरह आप लोग के मनपसंद गीत चली आप लोग के ही पसंद पर और जिन पहला गीत चले होला बा ये बिस्वानी दीपा के आवाज़ में रही लीलो सरिया साड़ी आजकल आज से सकब्जा बोले बहुत रंग बिरंगी बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर साड़ी नज़र आवता कहे कि आज से श्रावण मास शुरू हो गल बा और श्रावण मास हमने खातिर एगो बहुत पावन महीना है जहाँ पर पूरा महीना काल गुरु पूर्णिमा रहल गुरु पूर्णिमा से लेके अब रक्षाबंधन तक हमने एगो बहुत ही सांस्कृतिक बहुत ही धार्मिक बहुत ही आध्यात्मिक समय जियब जा और ये हमने के देश के खूबसूरती है कि पूरा साल हमने पर्व मनाएला जा पर्व के साथ साथ पूजा पाठ होते रहेला और श्रावणी में ओकर सबसे बड़ा जो विशेषता है वह यज्ञ और यज्ञ पूरा ब्रह्मांड के शांति पूरा ब्रह्मांड पूरा सृष्टि के सुख खातिर होवेला तो हमने के ई पृथ्वी पर पृथ्वी और ब्रह्मांड में सुख शांति हमेशा रही ऐसन कामना के साथ चला एगो बढ़िया गीत सुनी जा आप सब कोई के पसीन होला गाना लीलो सड़िया

रात के 9:16 होल बा और आप लोग के फोन कॉल्स आए के शुरू हो गल बा। अगला जोन गीत चली ये गीत सुने चाहत हवन शीला, और शीला ये गीत अपन पति के साथ साथ अपन सब लड़का लोग के नाम करत हवन। और उनकर लड़का लोग में हवन शशि, किरण, कबीर, यौवन, श्लोक, रुद्राक्ष और आंसली। तो जैसे जाना था वह आजकल हमने के जो वातावरण बा वो बहुत ही पवित्र वातावरण है गोसन बंधल बा। पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में ये अगला गीत हे गंगा मैया आप सब कोई के नाम, और ख़ास तौर पर जितना कोई अभी यज हवन के बाद घरे लौटत हवा जा, जे लोग व्रत धारण कर ले हवा जा, ये सुंदर गीत पूर्णिमा के आवाज़ में।

0: रंग संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day all
0: night. NBC TV programs ki jhalkiyan.
4: तो फिर भगवान को भी एक इंटरनेट समझ, एक डिवाइन इंटरनेट जो इस विश्व के हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पेड़ पौधा, हर अणु को कनेक्ट करता है। अगर इंटरनेट साइबर स्पेस में है तो द डिवाइन इंटरनेट स्वप्न आकाश में। स्वप्न आकाश, अ प्लेस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस।
0: शनिवार 1 अगस्त को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म रुद्राक्ष 2004 की ये मूवी संजय दत्त और बिपाशा बासु पर फिल्माई गई रुद्राक्ष।

बहा गौरी के आवाज में इजन अगला गीत सुना था वा एकर फरमाइश कर ले हवन खास तौर पर संजय मामा पापा और अगुआ

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ.
3: तो फिर भगवान को भी एक इंटरनेट समझ, एक डिवाइन इंटरनेट जो इस विश्व के हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पेड़ पौधा, हर अणु को कनेक्ट करता है. अगर इंटरनेट साइबर स्पेस में है तो द डिवाइन इंटरनेट स्वप्न आकाश में. स्वप्न आकाश, अ प्लेस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस.
2: शनिवार 1 अगस्त को एमबीसी 3 पर.

रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म रुद्राक्ष 2004 की ये मूवी संजय दत्त और बिपाशा बासु पर फिल्माई गई रुद्राक्ष।

सिया मांगे अयोध्या के राज इगीत बजल खास तौर पर बेलिया से आत्माराम जी के फरमाइश पर आत्माराम जी अपन चार गो बहिन के नाम करलन इगीत और उनकर चार गो बहिन में हवन ललिता सुदेवी छोटी और प्रभावती और अगला गीत बहुत ही मशहूर गीत मार ताली मार कुणाल हिरिला के आवाज़ में।

कुनाल हिरिला के आवाज़ में मार थाली मार, खास तौर पर बुनतिया के जानवी के नाम जे ये बखत हमने के सुनत हवन, जानवी के नाम जे बुनतिया के हवन।

बखत आप सुनत हवा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आपके मनपसंद गीत होला प्रोग्राम भोजपुरी तड़का और रात के 9:45 होलबा मतलब कि 10 बजे में 15 मिनट कमती बा और हमने के इजन सफर शुरू होवेला 9 बजे 2 घंटा तक चलेला रात के 11 बजे तक और आपके ही फ़ोन कॉल्स के आधार पर जितना भी गीत के आप लोग मांग करेला जा ओकर से एगो पूरा नवा लिस्ट बनेला और आपके पसंद के गीत चलते जा रहा। अभी जन अगला गीत चली काहे दिलवा लगैले काहे दिलवा लगैले जब हमके ये गीत के फरमाइश आल तो एकर पूरा लाइन हमके बतैलन शोभा जी पोंपले मुझसे हवन और बहुत ही हंसी मजाक के साथ ये गीत हमके एकर बोल बोलन और ये गीत आपके चाहे सुने के तब आपके एकर जो असली भाव बा वो समझ में आए। काहे हमर से ये गीत शोभा जी मंगलन ई तो उही जनियन हम उनकर से नहीं पूछली तो चला उनकर पसंद के ये गीत उनकर पूरा परिवार और जितना कोई अभी हमने के सुना था वजह आप सब कोई के नाम और देखी जा काहे लगैले दिलवा सैया के साथ केकर सैया के साथ ई गीत में सुनब जा।

धोती पोती पगड़ी संभाल के जब अइलन, ये गीत बहुत मशहूर है और रेडियो पर हमनी के अक्सर चलते रहेला। विक्रम कुलाचन के आवाज़ में गावल ई गीत के फरमाइश अभी करत हवन घोंगोप से सुनीता जी अपन बहिन विमाला खातिर, जे कोंगुमा से हमने के सुनत हवन हमेशा के तरह।

0: एबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।
2: क्या खा रहा है? इतना सब भी दूसरों को नहीं दोगे क्या?
3: अरे पहले मैं तो खाऊं, बहुत कड़क है ये।
1: अबे पागल है ये बॉम्ब है।
4: भगवान हमारी मदद करने हर रूप में आता रहता है और इस बार बॉम्ब के रूप में आया।
3: शंकर भगवान है ये, जय बम भोले शंकर।
5: अरे रंगीन आदमी लगते हो यार।
3: तेरा मामा यहाँ लंदन में?
0: रविवार 2 अगस्त को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म भागम भाग 2006 की कॉमेडी और सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर मूवी अक्षय कुमार और गोविंदा पर फिल्माई गई भागम भाग।

0: संगे।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day,

रात के 10:12 और आज के रात काल ही की तरह बहुत सुंदर पूनम के चांद खिलल बा। और जब आसमान साफ रहेला, चांद खिलल रहेला और सुंदर तिरंगन से भी भरल रहेला, तो उ रात्रि के कुछ और ही वातावरण बनेला। और बोलल जला कि हमने के जो जीवन है वो ये सब नक्षत्र से जुड़ल है, सूरज से, चांद से, तिरंगन से, जो अलग अलग ग्रह बा सबके साथ हमने के जीवन के एगो जुड़ाव है, ओकर एगो प्रभाव पड़ेला। और यही से हमने के जो मिजाज बा वो बदलते जाला। तो आशा करते हैं कि आप सब कोई की मिजाज बहुत अच्छा बा और आप लोग के फ़ोन कॉल्स एक के बाद एक अहिले जाता, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जन गीत चली, ये गीत के फरमाइश कर ले हवन हमने के स्थानीय कलाकारा, मशहूर कलाकारा पूर्णिमा जी, पूर्णिमा फुकीरा। ये अगला गीत नाम करत हवन ख़ास तौर पर अपन बेटी, अपन बिटिया पूजा के नाम, जिनकर अभी जन्मदिन रहा हाल ही में। और पूजा देवी दोयाल, उनकर पति के ओर से नीतीश, और साथ में उनकर बेटा आयुन, उनकर सास ससुर और पूरा देवी दोयाल और फकीरा परिवार के ओर से, साथ में पूर्णिमा जी इंग्लैंड में बसल अपन जिगर के टुकड़ा अपन बेटा प्रवेश के नाम ये गीत करत हवन। और उनकर कलेजा के एगो दूसर टुकड़ा ओकर भीरी अभी बिस्तर पर बैठल हवन, उनकर बेटी प्रवीणी, और बेटा के उनकर पत्नी के नाम भी कुष्मा, और उनकर समधिन सरोज के नाम। तो पूर्णिमा जी, आपके पूरा परिवार के नाम ये गीत, और आप बोला बोले के कि ये गीत ख़ास तौर पर आप हमार नाम भी करत हवा, तो देखा हम बता देली कि हमार नाम भी कर ले हवा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साथ चली चली जा, सुनी जा ये सुंदर गीत सीता सुहागिन।

पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में ई गीत के बाद जन अगला गीत चली बसंत सुपोर के आवाज़ में एगो शादी के गीत दुल्हा शादी करे जाता। ई गीत के फरमाइश कर ले हवन नफलुगा से राजन लक्ष्मण जी, अपन पत्नी माला, अपन बेटी प्रार्थना प्रगति, बहिन मानती, भगिनी उर्मिला तुलसी और सब लक्ष्मण परिवार के नाम और आप सब कोई के नाम जिकर घर में शादी ब्याह के मौसम चलता।

0: ऐसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: डुंगरपुर मैन आर नॉट कट आउट फॉर मैरिज। आज तक मेरी फैमिली किसी ने शादी नहीं की। डिड यू नो दैट?
2: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में।
3: हाय, आई एम अंजलि।
4: आई एम मैरिड। आई मीन विनय मल्होत्रा।
5: जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम।
0: रविवार 2 अगस्त को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म सलामे इश्क 2007 की ये मूवी सलामे इश्क सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माई गई सलामे इश्क।

उसके बाद अब जो अगला गीत चली, ये गीत मुकेश चेदी के गावल है और एक फरमाइश कर ले हवन तेरूश से शांति जी। शांति जी, हमेशा की तरह अपन मराठी परिवार के नाम करत हवन दागोचिया के ये गीत, साथ में अपन दागोचिया में उनकर भगीना ओम के नाम और अपन पूरा परिवार के नाम जोन गीत चले होला बा वह चलो चले मोरिस घूमे, मुकेश चेदी के आवाज़ में तेहूज के शांति जी के फरमाइश पर।

0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi. MBC TV programs ki jhalkiyan.
3: Ramu kaka.
4: Aao aao.
3: Gunge ho?
4: Haan.
3: Madam ko bolna, Anthony hai. Anthony Gonzalez.
5: Tumhare Jiju ke bataye hue address pe, maine Anthony Gonzalez ko letter bheja hai.
6: Mera koi dost nahi hai. कोई एंथनी गोंसाल्विस नहीं है।
7: तू क्या चाहता है कि तेरी बहन मर जाए, तेरे माँ बाप शौक में टपक जाए, तू अनाथ हो जाए? लकी
3: गोंसाल्विस।
2: शुक्रवार 31 जुलाई को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म गोलमाल रिटर्न्स, 2008 की कॉमेडी से भरपूर मूवी गोलमाल रिटर्न्स, अजय देवगन और करीना कपूर पर फिल्माई गई गोलमाल रिटर्न्स। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

ई बखत रात के 11 बजे में और 20 मिनट कमती बा, मतलब कि 10:49 हो बा। और ई 20 मिनट में आप खातिर आपके ही मनपसंद के और कुछ गाना अभी चले होला बा। अभी तक आप साथ देवत हवा ई खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमार और आपके मुलाकात ई कार्यक्रम के अंतर्गत आज के बाद फिर से होई आवत बिफे के। और आवत बिफे के ऐसे ही और एगो सुंदर भोजपुरी तड़का होला महफिल सजी और आपके ही फोन कॉल्स के दम पर फिर से प्लेलिस्ट बनी। और नहीं तक काल फजर के तब भेंटा भी करब सा। आप हमार साथ देवत हवा ये बखत ले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार खातिर, आपके फोन कॉल्स खातिर और आपके जितना भी शुभकामना बा वो सब खातिर। और हमार भी शुभकामना बा कि आज के रात आप सब कोई खातिर बहुत मीठा रही और आज के रात हमेशा की तरह आपके मीठा मीठा सपना आए। अच्छा अच्छा सोच के साथ आप नींद में जा ताकि फजर के जब उठबा तो वो सब सोच सच्चाई के रूप ले ली। बोलल जरा सोच में बहुत ताकत है और सिद्धि से सृष्टि बनेला। तो जोन बात के भी सिद्धि करबा सोचबा वही सच्चाई में आपके सामने आवेला। जोन कुछ हमनी के जीवन में है वो सब हमनी के सोच

से शुरू होवेला त अच्छा सोचा अच्छा के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा और यही सोच के साथ आप मीठा नींद में जा और अभी से और 20 मिनट तक भोजपुरी गीत आपके साथ देते रही और ई कार्यक्रम के बाद हमेशा की तरह आपके अगला मनपसंद प्रोग्राम चली सुनहरे पल जितना कोई भी ई बखत काम करत हवा जा सफर पर हवा जा हमने आपके साथ रहब जा एक बात भी सुनहरे पल में MBC रेडियो आपके साथ 24 घंटा रहेला त एक बार फिर आप सबको की बहुत बहुत शुक्रिया आज्ञा द शुभ रात्रि।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night, right here on your morning radio station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.

0: का किरण संगे
1: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो
0: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Zindagi ke anmol lamhe, Radio Mauritius ke saath.

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो।
0: योर काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल डे ऑन सुनहरी पल। सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: यादों का सफर फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आपका साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं हूँ गिनिशा और विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम जी। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आज का दिन ज़्यादा आप थके हुए नहीं हैं, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था। अगर ऐसी कोई बात है तो बस सारे स्ट्रेस को आप पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को संभालने के लिए। तो आराम से बैठ जाइए इस खूबसूरत सी सफ़र में, आप बस हमारा हम सफ़र बन जाइए। इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे दोस्तों एक बात बताइए क्या आपके पास भी कोई ऐसा गाना है जिसे सुनते ही आपकी आंखों के सामने एक पूरी कहानी आ जाती है शायद वो गाना आपने पहली बार स्कूल के दिनों में सुना हो या किसी फैमिली फंक्शन में शायद किसी खास इंसान ने आपके लिए वो गाना डेडिकेट किया होगा कभी किसी जमाने में या फिर वो गाना आपको किसी ऐसे शख्स की याद दिलाता हो जो आज आपसे दूर है पुराने बॉलीवुड गानों की यही तो खूबसूरती है मेरी जान ये

सिर्फ सुर और संगीत नहीं होते हैं बल्कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जब हम उन्हें दोबारा सुनते हैं तो लगता है जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। तो चलिए आपके इस पल को और भी खूबसूरत बनाएंगे बाय प्लेइंग द नेक्स्ट सॉन्ग जो खासकर हमारे दिल से हम प्ले करना चाहेंगे।

रात का ये सुकून भरा वक्त, पुराने गानों की मधुर धुन और आप हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जब साथ दे रहे हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत महफिल और क्या हो सकती है। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी थक जाते हैं, और कभी दिल बस थोड़ा सा प्यार और सुकून चाहता है। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल दिन के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। इसीलिए आज रात अपनी सारी फिक्रें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। जो बीत गया उसे एक प्यारी सी याद बना दीजिए, और जो आने वाला है उसका खुले दिल से इंतज़ार कीजिए। और इस सफ़र में पुराने बॉलीवुड गाने आपका साथ देंगे, क्योंकि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, बस दिल से महसूस किए जाते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी आवाज़ निशा, और ये है सुनहरे पल, जहाँ हर गीत के साथ एक याद जुड़ी है, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

रात धीरे धीरे गहरी हो रही है, आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है और हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड संगीत की एक और खूबसूरत महफिल। बिल्कुल, अगर आप इस वक्त घर पर हैं, काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हो या बस अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मैं हूँ आपका साथ देने के लिए, आपके इस खूबसूरत सी सफर में आपका हम सफर बनने के लिए। बिल्कुल जी, आज रात हम सुनेंगे वो गीत जो कभी रेडियो की पहचान हुआ करते थे, वो आवाज़ें जिन्हें सुनते ही दिल में एक अलग ही सुकून उतर जाता है, और वो धुने जो आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहली बार सुनी थी आपने।

दिल से हम वाकई में उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत पुराने गीतों का सिलसिला जो आपके और हमारे बीच में चल रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, रात का ये सुकून भरा वक्त और पुराने बॉलीवुड गानों की मिठास, बस इसी खूबसूरत एहसास का नाम है सुनहरे पल। मैं हूँ आपकी प्यारी सी गिनिशा जो आपका साथ दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे साथ इस खूबसूरत से सफ़र में, क्योंकि कभी कभी एक पुराना जो गाना है हमें उन यादों तक लेके जाते हैं जहाँ हम वाकई में दोबारा जाना चाहते हैं। तो आज रात यादों के इस सफ़र को एंजॉय कर लीजिए सुनहरे पल के साथ।

आता है ना आपको बाय बाय बोलने का तो दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है लेकिन फिर हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है फिर आएंगे वापस एक और सुनहरे पल के साथ रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ओनली ऑन रेडियो मॉरिशस आप हमें इजाजत दीजिए शुभ रात्रि शब्बा खैर और कीप ऑन स्प्रेडिंग लव और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
1: महफिल शमा फिरती हो कहां।
2: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: गहरी तो ट्रेजेडी है ये। मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहां तक कि।
1: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
0: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
1: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।